सुप्रभात एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 15, तदनुसार 6 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं आइए आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 6:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी के ज्योति और सुबह 7 आपको सुनवाएंगे हम कार्यक्रम जोहार चायबासा, जिसमें कुछ टिप्स के अलावे आप सुनेंगे बॉलीवुड फिल्म की। समाचार प्रभात प्रातः 8 मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के लिए श्रोताओं आपको लिए चलेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र। 8:40 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम विविधा। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन और सुबह 10 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो अभी श्रोताओं अभी जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे के ज्योति के स्वर में ये सुगम संगीत। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, बदलते मौसम की तरह जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती है। धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास की हर कठिनाई को नई शुरुआत में बदल देते हैं। तो इसी सुविचार के साथ श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारा आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम। आकाश में बादलों की आवाजाही, बीच बीच में बारिश की फुहारें और सुहानी हवाओं के साथ श्रोताओं, हमारे आज के जोहार चायबासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चायबासा के आसपास के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहने, रुक रुक कर कहीं बारिश तथा कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है, इसलिए अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचें। बारिश के इस मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो सकती है। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो गति नियंत्रित रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें तथा जल भराव वाले रास्तों से सावधानी पूर्वक गुजरें। और इसी के साथ श्रोताओं, हम शुरू करते हैं आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में बारिश की इस सुहानी बेला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा आज यहाँ का मौसम खुशगवार है। कहीं बादलों का डेरा है तो कहीं फुहारे मन को भिगो रही है। ऐसे मौसम में सफर पर निकलते समय आप जरूर सावधानी बरतें। और सुनवा रहे हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। फिल्म का नाम था उसने कहा था। दोस्तों, बारिश की बूंदें जब धरती को छूती है तो मन अपने आप गुनगुनाने लगता है और इसी खूबसूरत एहसास को सुनते हैं इस गीत में। फिल्म का नाम है धरती और गीत लिखा है हंसराज जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, बारिश का आनंद ही कुछ और है, लेकिन भीगने के बाद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और सुनवा रहे हैं आपको ये सदाबहार गीत जिसने बरसों से लोगों का दिल जीता है। किशोर कुमार का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, एसडी बर्मन के धुन पर, फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है और सुनवा रहे हैं इस बारिश के मौसम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म चित्रलेखा का ये गीत।

श्रोताओं, बरसात आ चुका है, लेकिन बरसात अपने साथ कुछ मौसमी बीमारियों का भी खतरा लेकर आती है। डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और पेट के संक्रमण से बचने के लिए साफ और उबला हुआ पानी पिएं, ताज़ा भोजन करें, घर के आसपास पानी जमा न होने दें तथा मच्छरों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। यदि तेज बुखार, लगातार खांसी या कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें। और इसके साथ ही श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। दोस्तों, जब बादल घिराते हैं तो हर दिल बारिश की आस लगाने लगता है, और इसी उम्मीद और खुशी को बयां करता हमारा ये कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म लगान से जावेद अख्तर का लिखा ये गीत सुनते हैं एआर रहमान के धुन पर, अलका याग्निक, उदित नारायण और सुखविंदर की आवाजों में।

दोस्तों, बरसात का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही सावधानी की भी मांग करता है। जैसे कि घर से निकलते समय आप छाता या रेनकोट अवश्य अपने साथ रखें। जल भराव वाले जगहों से होकर ना गुजरें, क्योंकि गड्ढों या खुले मैनहोल का पता नहीं चल पाता है। बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और टूटे हुए बिजली के तारों से दूर रहें। गरज चमक के समय खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें। भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें ताकि आप सर्दी जुकाम से बच सकें। पीने के लिए स्वच्छ या उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें और ताज़ा भोजन करें। अपने घर के आसपास या छत पर पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम की जा सके। अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वाहन चलाते समय हेडलाइट जलाकर रखें, अपनी गति को नियंत्रित रखें और आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। यदि आपको तेज बुखार, शरीर में दर्द, लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही है तो आप स्वयं दवा लेने के बजाय डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पानी से सुरक्षित रखें। नदी, नालों या तेज बहाव वाले पानी में उतरने या सेल्फी लेने जैसे जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। तो श्रोताओं, ये आवश्यक सुझाव के बाद हम सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आदमी का ये गीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुगड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुगड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गांव बारे हत्तो देखा तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: नितुम बुरम सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़

0: मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इस अपील के बाद श्रोताओं, आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है और आज आपको हम सुनवा रहे हैं बारिश के इस मौसम में बारिश के ही गीतों का। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म अनजाने का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शैलेंद्र की रचना सलिल चौधरी के धुन पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म परख का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को फिल्म मजबूर में।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा जोहार चायबासा का गीतों का क्रम यहीं समाप्त होता है। लेकिन श्रोताओं, एक बात जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि बारिश का आनंद जरूर लें, लेकिन बिजली चमकने के समय खुले स्थानों से दूर रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। इसी के साथ समाप्त होता है आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
5: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
6: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
7: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
9: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
11: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
10: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
4: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the 3-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
10: India will host a 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus to advance women-led development. The BRICS heads of anti-drug agencies meeting will begin today in Guwahati, Assam. The two-day event is being organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. The meeting will bring together heads of anti-drug agencies and senior officials from BRICS member countries to strengthen cooperation against drug trafficking and substance abuse. A report.
6: The BRICS head of anti-drug agency meeting in Guwahati will focus on combating synthetic drugs and precursor diversion, strengthening intelligence sharing and operational coordination, and enhancing capacity building and institutional cooperation. Delegates will discuss emerging challenges such as new psychoactive substances, darknet-enabled trafficking, cryptocurrency-linked financial flows, and abuse use of precursor chemicals. India will also showcase its effort to combat drug abuse and trafficking, including the recently released vision document on Narcotic Control 2026-29. During the meeting, member countries will deliberate on strategies to address evolving drug-related threats and strengthening international cooperation. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. Earlier, the meeting was scheduled to take place at Maniram Chavani around 3 p.m., but now the venue has been changed and the meeting will be held at the premises of the Ram Temple. Our correspondent has the details.
7: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the Trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
10: The nation pays homage to Bharatiya Jan Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture in association with the West Bengal government will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. More from our correspondent.
12: Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata this afternoon to attend events of 125th birth anniversary celebrations of Shyama Prasad Mukherjee. He will head towards Eco Park in New Town. There, he will participate in the groundbreaking ceremony for the construction of a 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Later, in the afternoon, during the event at Mukherjee's ancestral residence in Bhavanipur, Amit Shah will pay tribute by garlanding his statue. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
10: Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, describing him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. In an article, the Prime Minister said Dr. Mukherjee's public life was defined by his unwavering commitment to the indivisibility of India. He said Dr. Mukherjee stood firm during partition to ensure that West Bengal remained an integral part of the country and later dedicated himself to the cause of Jammu and Kashmir. Mr. Modi said the revocation of Articles 370 and 35A in 2019 was the most fitting tribute to his martyrdom. The Prime Minister also noted Dr. Mukherjee's role as an independent India's first Minister for Industry and Supply, saying he laid the foundation of modern industrial India through initiatives such as the Damodar Valley Corporation and the Sindri Fertilizer Plant, while supporting handlooms, cottage industries and artisans. Incessant rain with gusty winds continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. A red alert has been issued for Raigarh district, where major rivers have crossed the danger level. Torrential rains have wreaked havoc in Raigarh and Ratnagiri districts. Building collapses have claimed many lives in Mumbai and Navi Mumbai. We have a report.
3: The IMD has issued an orange alert for Mumbai, Thane, Palghar, Ratnagiri and Sindhudurg for today, forecasting heavy rainfall accompanied by gusty winds. A red alert has been issued for Raigarh district, warning of extremely heavy rainfall. All government, municipal and private schools and colleges in all the coastal districts and Pune will remain closed today as a precautionary measure. Collapse of 2 to 3 houses in a 3-story kachcha, that is makeshift or unauthorized chawl, in Mankurd area of Mumbai resulted in the death of a total of 6 people, including 5 children and 1 woman. Strong winds led to 142 incidents of trees or branches falling across Mumbai and claimed 2 lives. Heavy rains continued to wreak havoc in Thane and Palghar districts yesterday, claiming 2 lives and triggering multiple structural collapses. With Sangeeta Godbole's report, Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
10: And in sports, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the 5-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. The 34-year-old forward brought the curtain down on his international career moments after Brazil's hopes of a 6th World Cup title were ended. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. In cricket, Australia defeated England by 7 wickets to lift the ICC Women's T20 World Cup at Lord's in London last night. Chasing a target of 151 runs set by England, Australia scored 153 for 3 in 17.1 overs. Beth Mooney was the highest scorer for Australia with 64 runs. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. In a bilingual live phone-in program, Public Speak at 9:30 tonight, we will bring an insightful discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology, with Gulshan Rai, cybersecurity expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
13: Thank you, Anuja. All the dailies have covered Prime Minister Narendra Modi's tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. Quoting the Prime Minister, the Tribune, under the headline, Mukherjee, a lamp that still burns bright, says, the one ideal that defined Shyama Prasad Mukherjee's public life above all else was the indivisibility of India. The pioneer citing the PM's article writes, Dr. Shyama Mukherjee stands out for his humanitarian efforts, especially during the famine-struck Bengal in 1943, and how he stood firm during the upheaval of partition to ensure that West Bengal remained an integral part of India. A top front-page headline in the Indian Express states, Armed forces seek larger retention of Agniveers after end of 4-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says child care housework keep 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, A Voice That Brought Beam Alive Falls Silent. Her legend lives forever. And with that, it's back to you, Anuja.
10: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से बीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किश्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहे श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय। अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेल गांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने दो अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और चोरी पर चिंता जताई है। वे कल नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। श्री शाह ने अवैध खनन और कोयले के अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने को निर्देश दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने अधिकारियों को CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन के इलाकों और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने झारखंड से बीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बीबीजी रामजी के क्रियान्वयन की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यों को इस योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किश्त भी जारी की।
1: को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने का दिशा में अहम साबित होगा। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक चुनौतियों और नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी मीरा मुंडा के साथ कल स्वगणना प्रपत्र भरा। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराना और उसका समय समय पर सत्यापन कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
2: 20 वर्षों में एक बार गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता है। सभी मतदाताओं को 2003 और 2026 के बीच में ये सूचना ग्रहण करना, ये सूचना देना कि मतदाता सूची में उसका नाम रहे और जो जिनकी मृत्यु हो गई उसका नाम उससे हटे और नए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उसका नाम जुड़े।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आज रांची में जामताड़ा, हजारीबाग और रांची जिले से जुड़े 14 मामलों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई में नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण, आदिवासी भूमि विवाद, सरना स्थल, खतियान भूमि अतिक्रमण और मुआवजा सहित कई मामलों पर विचार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इधर जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीख लेने की अपील की।
3: विधायक सेना प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना पर और हमें 75 वर्षों तक बंगाल में सरकार बनाने में पार्टी पाई और वास्तव में बंगाल के लोगों की जो आजादी है वो 4 मई को ही जब वहाँ चुनाव का जब परी 4 मई को ही बनो।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के चांडल स्टेशन पर आज से 12 जुलाई तक विकास कार्यों को लेकर कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्री

0: और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
1: रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अभिषेक वर्मा ने 25 मीटर स्टैंडिंग राइफल स्पर्धा में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की, जबकि मन्नत कुमारी, कीरत सिंह और रौनक राज ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। समापन समारोह में आईजी प्रभात कुमार और आईजी अनूप बिरथरे ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने धनबाद में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आज ट्रस्ट की होने वाली बैठक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, चंपत राय के विकल्प की तलाश शुरू, आज होगी ट्रस्ट की बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में साइकिल बाइक फैक्ट्री लगाने की झारखंड सरकार की तैयारी। दैनिक भास्कर ने रांची में संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, आतंकी साजिश का हिस्सा होने के खुलासे को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहा श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने 2 अलग-अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। अमृता के साथ।

लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में श्रोताओं सुनते हैं उरांव लोकगीत सुकरा भगत और साथियों के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ। झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में। उरांव लोकगीत कलाकार थे सुकरा भगत और उनके साथी। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम चर्चा करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस पर, बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर, और आज हम मना रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, यह दिवस उन संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। आधुनिक जीवन में मनुष्य और पशुओं का संपर्क पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। पशुपालन, डेयरी, कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पालतू पशुओं का बढ़ता चलन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक कारणों से जूनोटिक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। विश्व जूनोसिस दिवस केवल एक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस ही नहीं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों का एक दूसरे से गहराई से संबंध है। यदि पशु स्वस्थ रहेंगे और तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और हमारा मानव समाज भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। 6 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1885 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहली बार रेबीज के टीके का सफल प्रयोग किया था। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई थी। रेबीज जैसे घातक बीमारी के विरुद्ध यह सफलता मानव के लिए एक नई आशा लेकर आई। इसी ऐतिहासिक घटना के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन विश्व भर में स्वास्थ्य संस्थाएं, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न सामाजिक संगठन लोगों को जूनोटिक रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करते हैं। जूनोसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जून अर्थात पशु और नोसोस अर्थात रोग, जिसका अर्थ है ऐसे रोग जो पशुओं से मनुष्यों में या कभी कभी मनुष्यों से पशुओं में फैल जाया करते हैं। यह रोग वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, परजीवी अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। संक्रमण प्रत्यक्ष संपर्क, दूषित भोजन या पानी, संक्रमित पशु के काटने, कीड़ों के माध्यम से या पर्यावरण के जरिए भी फैल सकता है। आज पूरी दुनिया में जूनोटिक रोगों की संख्या और प्रभाव बढ़ने के पीछे अनेक कारण माने गए हैं श्रोताओं, क्योंकि तेजी से बढ़ता शहरीकरण, वनों की कटाई, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन का होना, पशुपालन और डेयरी उद्योग का विस्तार होना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार, स्वच्छता की कमी, वन्य जीवों के अवैध व्यापार में वृद्धि, इन सभी कारणों से मनुष्य और जंगली पशुओं के बीच संपर्क बढ़ रहा है, जिससे नए संक्रमण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ रही है। विश्व में अनेक जूनोटिक रोग पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है रेबीज। यह संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य स्तनधारी पशुओं के काटने से फैलता है। श्रोताओं, यदि समय पर उपचार न मिले तो यह लगभग हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। बर्ड फ्लू, यह मुख्यतः संक्रमित पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकता है। पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों को इससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्वाइन फ्लू, यह सुअरों से संबंधित इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। सुतो, समय समय पर इसके प्रकोप ने अनेक देशों को प्रभावित किया है। लेप्टोस्पायरोसिस, यह संक्रमित पशुओं के मूत्र से, दूषित पानी से या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है। वर्षा और बाढ़ के समय तो इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। ब्रुसेलोसिस, यह संक्रमित पशुओं के कच्चे दूध या उनसे प्रत्यक्ष संपर्क के कारण फैलता है। श्रोताओं, एंथ्रेक्स,
यह रोग संक्रमित पशुओं या उनके उत्पादों के संपर्क से फैल सकता है। हालांकि कोविड-19 के उत्पत्ति पर वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है, लेकिन इस महामारी ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि पशुओं से उत्पन्न होने वाले संक्रमण वैश्विक संकट का रूप ले सकते हैं। इस अनुभव के बाद विश्व स्तर पर वन हेल्थ की अवधारणा को और अधिक महत्व दिया गया। भारत जैसे विशाल देश में कृषि और पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, करोड़ों लोग पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पालतू पशु, वन्य जीव और पक्षी भी पाए जाते हैं, इसलिए जूनोटिक रोगों की रोकथाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार समय समय पर पशुओं के टीकाकरण, रोग निगरानी, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस रोगों की रोकथाम

का प्रयास करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश जूनोटिक रोगों को समय रहते यदि नहीं रोका गया तो बहुत ही समस्याओं का हमें साथ सामना करना पड़ेगा। इसलिए पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा, समय पर टीकाकरण, स्वच्छता और सुरक्षित भोजन की आदतें संक्रमण को कम कर सकती है। इसी उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में केवल मनुष्यों का ही नहीं पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी समान रूप से होना आवश्यक है। श्रोताओं, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, वन विभाग, कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वित कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत में बड़ी संख्या में पशुधन, पालतू पशु, वन्य जीव और पक्षी पाए जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग पशुपालन पर आधारित है। ऐसे में जूनोटिक रोगों की रोकथाम भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें समय समय पर पशु स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित करती है, जिसमें पशुओं के नियमित टीकाकरण का अभियान, रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, पशु रोगों की निगरानी और त्वरित सूचना की प्रणाली, पशु चिकित्सालयों और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो किया जा रहा है, स्वच्छ डेयरी और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो श्रोताओं, विश्व जूनोसिस दिवस हमें यही संदेश देता है कि बीमारी के फैलने का इंतजार करने के बजाय उसकी रोकथाम के लिए हमें पहले से तैयार रहना ही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: और इसके बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर। श्रोताओं, जगजीवन राम जिन्हें स्नेह पूर्वक बाबूजी कहा जाता था, जिनकी पुण्यतिथि 6 जुलाई को मनाई जाती है, उनका निधन 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाज सुधारक, दलितों के अधिकारों के सशक्त प्रवक्ता तथा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय मंत्रियों में से एक थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को चंदवा भोजपुर में यानी बिहार में हुआ था और निधन 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। स्वतंत्र भारत में लगभग 35 वर्षों तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों का उन्होंने सफल नेतृत्व किया। वर्ष 1979 में भारत के वे उप प्रधानमंत्री भी रहे। सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने प्रभावी नेतृत्व किया। श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक समानता और दलित सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का समर्थन भी किया। लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान भी दिया। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नई दिल्ली स्थित समता स्थल पर विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिक उन्हें आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रोताओं, बाबू जगजीवन राम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि दृढ़ संकल्प, परिश्रम और सेवा भाव से सामाजिक असमानताओं को दूर कर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनकी सादगी, दूरदर्शिता और राष्ट्र सेवा सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।
1: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारह तो कहाँ तब घर आए ने हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: नितुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरा मिना ना यापा मेरे तपा मेरे वाह बेटा निका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में उड़ी उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रूम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको नल मिया अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं।
0: और इस अपील के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में फिर से स्वागत है। और अब श्रोताओं, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, हम बात करेंगे उनके बारे में। उनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को तत्कालीन कोलकाता में हुआ था। वे प्रख्यात शिक्षाविद, विधिवेता, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इसके साथ ही वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, जिसे बाद में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आधार माना गया। डॉक्टर मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति और शिक्षाविद थे। डॉक्टर मुखर्जी बचपन से ही अत्यंत ही मेधावी थे और उन्होंने बहुत कम आयु में ही उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और मात्र 33 वर्ष की आयु में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति बने। स्वतंत्रता के बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। बाद में उन्होंने कुछ नीतिगत मतभेदों के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पक्ष पसधर रहे हुए हमेशा जनसंघ की स्थापना के माध्यम से वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा को संगठित स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर में नज़रबंदी के दौरान हुआ। उनकी मृत्यु आज भी ऐतिहासिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रहती है। उनकी जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियां और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती है। उनके शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में योगदान को बहुत ही श्रद्धापूर्वक आज भी स्मरण किया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा, नेतृत्व और जनहित के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी जयंती हमें देश के विकास, राष्ट्रीय एकता और समाज के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो श्रोताओं, हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर। और अब सुनते हैं एक गीत।

किशोर कुमार के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम विविधा यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं लेकर हाजिर है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंजन में आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कुमार शानू और कविता कृष्ण मूर्ति का गाया, जावेद अख्तर का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का ये गीत। और अब अगला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह का गाया, तुराज और अजीम सिराजी का लिखा, शारिब और तोशी के धुन पर फिल्म जैकपॉट से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इस संदेश के बाद श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन और सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद इरफान का गाया फिल्म यारियां का ये गीत, और कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनवा रहे हैं आपको मोहित चौहान का गाया, प्रिया सरिया का लिखा, सचिन जिगर के धुन पर फिल्म सिमरन का ये गीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में

0: हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई सुनकर के कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी।
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
1: विद्यार्थी को
0: संकोच
1: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
0: जी,
1: कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
0: मनोबल बढ़ता है।
1: जी। और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
0: तालमेल
1: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है
0: जी।
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से।

0: और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं,
1: ऐसा
0: जबकि
1: होता
0: वो बैठे एक ही घर में हैं,
1: जी हाँ।
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए।
1: जी।
0: और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा आप आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है,
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें, दूसरा जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें।
0: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें, और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें, और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें, और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8448440632 8448440632, ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से, आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: जोहर रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रचना
1: और मैं
0: और
1: हूँ अमृता।
0: आप सबको हमारा जोहार
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम में हाजिर हैं हम ढेर सारी जानकारियाँ लेकर, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। क्यों अमृता?
1: बिल्कुल।

0: हाँ मृत है तो बिल्कुल बात सच है कि अगर प्रेम रहे तो सब कुछ सही रहता है, हमें आपस में हमेशा प्रेम से ही
1: रहना
0: रहना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: ठीक
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और यदि हमारे भीतर सीखने की ललक हो तो हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और यदि ये ललक समाप्त हो जाए तो हमारे भीतर उदासीनता छा जाती है।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कभी कभी कुछ नया सीखना या समझना
0: हम
1: हम
0: नहीं
1: नहीं
0: चाह
1: चाहते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं को इतना बुद्धिमान समझ बैठते हैं कि हमारे लिए कुछ नया सीखने को शेष नहीं रह जाता।
0: हम ऐसा सोचने लगते कि हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, हमको तो सब कुछ
1: बिल्कुल
0: आता
1: सब कुछ
0: है।
1: आता।
0: और इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक अहंकार की भावना
1: जी
0: जन्म ले लेती
1: जी
0: है, और ये अहंकार ही हमारे सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। जबकि जीवन का प्रत्येक पड़ाव हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और कीट पतंगे आदि, किसी से भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं।
1: हाँ देखा जाए तो यह दुनिया ही एक पाठशाला है जो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने के लिए आतुर है। इसीलिए अपने अंदर सीखने की ललक को कभी मरने ना दे, और कहते
0: मैं इसलिए
1: भी रहे कि
0: भी
1: सीखने की कोई उम्र नहीं
0: ऐसा
1: होती।
0: हम सब कहते हैं।

0: जो है मानसून अब भी कमजोर है। रांची में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अभी मानसून जो कहा जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो कमजोर है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: जुलाई के दूसरे सप्ताह में अच्छी वर्षा होगी, ऐसा
1: हाँ,
0: कहा जा रहा है।
1: मौसम विभाग के अनुसार जो रांची में है 30 मिलीमीटर तक ही बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13.1 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 15.0 डिग्री मतलब मिलीमीटर बारिश देखी गई है, दर्ज की गई है।
0: ऐसा मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, और ये निम्न दबाव अब गति गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और उड़ीसा के उत्तरी भाग व झारखंड के समीप से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। इसके प्रभाव से ही आज और कल तक के जो है इलाकों में राज्य में बारिश होने की आसार है, और ये भी कहा जा रहा है कि 6 और 7 यानी कि आज और कल तक है रांची सहित कई क्षेत्रों में गरज चमक वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, और 7 और 8 जुलाई को राज्य के उत्तरी पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में भारी वर्षा हो सकती है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश अभी होगी, कल
1: बिल्कुल।
0: तक होने के
1: और
0: आसार।
1: काफी बारिश होने की वजह से जो बत्ती भी गुल हो जा रही है, काफी जगह है कि तार, काफी आंधी होने की वजह से तार टूट जा रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ जा रहे हैं,
0: हाँ, तो
1: तो
0: बिजली की समस्या तो हो ही रही है, लेकिन इसका एक जो कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि उनको जो है इस समय बारिश का इंतजार रहता है उनकी फसलों के लिए, तो किसान इससे थोड़ी
1: किसान
0: खुश
1: भाई हमारे खुश होंगे। बिल्कुल।
0: हैं। तो ठीक है, चलिए, अभी मौसम से हमें गर्मी से राहत मिली है, तो आप इस मौसम का आनंद लें और साथ ही साथ हमारे साथ इस गीत का भी।

0: तो अमृता, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास घटा था देश और दुनिया में।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आज के दिन जो है हमें जानना है कि इतिहास में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी। तो भारतीय वनस्पति उद्यान का गठन जो है 6 जुलाई 1787 को पश्चिम बंगाल के शिवपुर में किया गया, जिससे यह देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यानों में से एक बन गया। 6 जुलाई 1885 में फ्रेंच रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीवी विज्ञानी लुई पास्चर ने सफलतापूर्वक एक एंटी रेबीज वैक्सीन का परीक्षण किया। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी।
0: और 1892 में आज ही के दिन दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने औपनिवेशिक सरकार में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
1: मालवी एक अफ्रीकी देश ने 6 जुलाई 1964 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और यह दिन देश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: उन्नीस सौ
1: और
0: बासठ
1: 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से बंद नाथुला पास भारत और चीन के बीच एक व्यापार केंद्र के लिए 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला था।
0: और सन 1944 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। और 1785 में आज ही के दिन डॉलर को एक वोट से अमेरिकी की करेंसी घोषित कर दिया गया था।
1: आज ही के दिन 1975 में कोमोरोस को फ्रेंच से आजादी मिली थी, इसलिए आज यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 1947 में आज ही के दिन सोवियत संघ में AK-47 राइफल का उत्पादन शुरू किया गया था। एक फुल ऑटोमेटिक AK-47 1 मिनट में 100 गोलियां दाग सकती है। इसका इस्तेमाल लगभग हर

0: की सेना जरूर करती है।
1: और 2005 में मेक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पदचिन्ह मिला था, और 1959 में आज ही के दिन वेल्लोर अस्पताल में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई।
0: सन 2006 में आज ही के दिन विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया। 2008 में दक्षिणी मिस्र ने 5,000 पुराने साल शाही कब्रिस्तान की खोज की गई।
1: और आज ही के दिन 2012 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा, और इसके बाद अमेरिका और भारत का स्थान रहा।

0: हम लोग बातें कर रहे थे अमृता इतिहास
1: के
0: की।
1: बारे में।
0: तो अब आज
1: अब
0: बातें
1: बातें
0: करते
1: करते
0: हैं
1: हैं कि
0: उनकी
1: आज जो है किन किन महान हस्तियों का
0: जन्म
1: जन्म
0: हुआ
1: हुआ
0: था।
1: था।
0: बिल्कुल,
1: तो आज ही के दिन 6 जुलाई 1887 में,
0: 37
1: में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्त्रविद और समाज सुधारक थे। वे भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के मतलब विद्वान की हैसियत से भंडारकर ने संस्कृत की प्रथम पुस्तक और संस्कृत की द्वितीय पुस्तक की भी रचना की, जो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने की सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है।
0: और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म भी 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 33 वर्ष की अल्पायु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे।
1: अनिल माधव दवे का जन्म 6 जुलाई 1956 को हुआ था। वो एक भारतीय पर्यावरण विद और राजनेता थे, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे।
0: बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। उन्हें अहिंसा, शांति और तिब्बत की स्वतंत्रता के शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए 1989 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: और अभिनेता रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह
0: भगनानी है। और रणवीर सिंह को कौन नहीं जानता
1: बिल्कुल,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: उनकी
1: बिल्कुल।
0: कितनी सारी फिल्में हिट हुई हैं, जब से उन्होंने फिल्म में आने की शुरुआत की बैंड बाजा बारात से लेकर, और अभी जो उनकी पिक्चर आई थी धुरंधर, उन्होंने काफी संघर्ष किया और इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। तो उनको देते हैं जन्मदिन की बधाई और सुनते हैं उनकी पहली फिल्म यानी बैंड बाजा बारात से उन पर फिल्माया गया एक गीत।

0: अब बातें उनकी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो 1986 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जगजीवन राम का निधन हुआ था। जगजीवन राम ने समाज में फैली छुआछूत की प्रथा का विरोध करते हुए समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ 1935 में एक लीग की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे और तब उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था।
1: और 2002 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जो है
0: धीरू भाई
1: अंबानी का निधन हुआ था। सिर्फ 30 सालों में उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को एक विशाल कंपनी में बदल डाला, जिसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है।
0: बिल्कुल। और हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदू युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र का निधन 6 जुलाई 1894 को हुआ था। और 6 जुलाई 2018 में प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी अमृतलाल वेगड़ का निधन हुआ था। इनके द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत सौंदर्यनीय नदी नर्मदा के लिए उन्हें सन 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: और 1997 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद का निधन हुआ था। 1946 में आई फिल्म नीचा नगर के निर्देशक चेतन आनंद ही थे। इस फिल्म को उन्होंने 1946 में आयोजित पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता देव आनंद के बड़े भाई थे और उन्होंने अपने भाई देव आनंद के साथ नवकेतन
0: फिल्म की स्थापना की थी,
1: जो कि फिल्मों के निर्माण करने वाली
0: एक कंपनी थे। बिल्कुल, हम देवानंद को जानते हैं और देवानंद के बड़े भाई थे चेतन आनंद। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और एक दो फिल्मों में अभिनय भी किया था, लेकिन उन्होंने फिल्में ज्यादा बनाई हैं। तो सुनते हैं उन्हीं के द्वारा निर्मित एक फिल्म का गीत, यानी हीर राजा फिल्म से ये गीत।

0: इतिहास की बातें तो अमृता हो गई, अब कुछ थोड़ा सैर सपाटे की बात भी हो
1: हाँ
0: जाए।
1: बिल्कुल। और ये जो मौसम है बारिश का मौसम है, तो इस समय अगर देखा जाए तो फॉल्स की खूबसूरती जो है वो देखने लायक होती है।
0: बिल्कुल, जो वर्षा के मौसम में पहाड़ों की सैर जो है बहुत अच्छी रहती है, और वैसे भी मानसून में जो है ना प्रकृति हम कहें कि खिलकर उठती है,
1: बिल्कुल, उसकी
0: शांत मौसम
1: असली जो खूबसूरती है
0: उसी
1: वो
0: समय
1: अभी
0: आती है।
1: आती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ हरी भरी पहाड़ियां देती हैं और झरने में भी खूब पानी आता है, तो झरने देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं,
1: और
0: तो
1: उसके आसपास का जो जंगल है वो काफी हरा
0: हरा
1: भरा हो
0: भरा हो
1: जाता है,
0: जाता है।
1: उसकी हाँ उसकी हरियाली से उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है ना।
0: बिल्कुल, तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे हिरनी फॉल्स की। हिरनी की तरह दिखता ये जलप्रपात झारखंड को प्रकृति ने जितनी उदारता से पहाड़, जंगल, नदियां और जलप्रपात दिए हैं शायद ही किसी अन्य राज्य को मिले हों। ये हम सब जानते हैं कि
1: हाँ
0: झारखंड को अगर हम झरनों का शहर कहें तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: हाँ
0: और इन्हीं अनमोल प्राकृतिक धरोहरों में हिरनी जलप्रपात अपनी अद्वितीय सुंदरता, शांत वातावरण और घने जंगलों के कारण विशेष पहचान रखता है। रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित ये जलप्रपात हर वर्ष हजारों प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लगभग 70 किलोमीटर दूर रांची से और करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर से यहाँ सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है।
1: हाँ और कहा जाता है कि इस जलप्रपात का नाम हिरनी इसलिए पड़ा क्योंकि ऊंचाई से गिरती इसकी जलधारा दूर से किसी तेजी से दौड़ती हिरनी की तरह दिखाई देती है। हालांकि इस नाम से जुड़ी लोक कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न रूप से सुनाई जाती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ की प्राकृतिक छटा हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों ओर फैले साल, सागवान, महुआ और मिश्रित वनों की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव, पहाड़ियों के बीच बहती ठंडी हवा और जंगल की स्वाभाविक शांति ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां पहुंचकर शहर की भागदौड़ और तनाव स्वतः पीछे छूट जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जो जीवन हम लोग आजकल जीते हैं ना, इतनी भागदौड़ भरी जीवन है, अगर वहाँ ऐसे शांत वातावरण मिल जाए तो बहुत ही आनंद मिलता है। और हिरनी जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक बनावट है। लगभग 37 मीटर यानी करीब 121 फीट की ऊंचाई से रामगढ़ा नदी का निर्मल जल जब विशाल चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरता है तो उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है।
1: हाँ सूर्य की किरणें जब इन फुहारों पर पड़ती है तो कई बार इंद्रधनुष की रंगीन छटा दिखाई देती है जो इस स्थान की खूबसूरती को
0: और भी
1: और
0: बड़ा।
1: बढ़ा देती है ना। मानसून के मौसम में हिरनी जलप्रपात का सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है
0: बिल्कुल।
1: और जुलाई से सितंबर के बीच जब झारखंड में अच्छी वर्षा होती है तब जलप्रपात पूरे वेग से बहता है और उसका विशाल स्वरूप देखते ही बनता है।
0: बिल्कुल, और हिरनी जलप्रपात केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि झारखंड की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसपास के जंगल अनेक प्रकार के पक्षियों, तितलियों और वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र की स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और हरियाली पर्यावरण संरक्षण के महत्व का भी संदेश देती है।
1: हिरनी जलप्रपात आज केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि झारखंड की प्राकृतिक आत्मा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पहुंचकर ऐसा अनुभव होता है मानो जंगल, पहाड़, नदी, झरना मिलकर प्रकृति का ऐसा संगीत रच रहे हो जिसे केवल सुना नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति झारखंड की वास्तविक प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखना चाहता है उसके लिए हिरनी जलप्रपात एक ऐसा ही गंतव्य है जहाँ एक बार पहुँचने के बाद लौटने का मन नहीं करता। यही कारण है कि यह जलप्रपात आज भी झारखंड आने वाले हर पर्यटन की यात्रा सूची में विशेष
0: विशेष
1: स्थान रखता है।
0: बिल्कुल
1: तो इस मानसून में प्लान जरूर बनाएं और वहां पे
0: जरूर
1: जरूर
0: जाए।
1: जाएं।
0: बिल्कुल।

0: देखो कितना खूबसूरत गीत मैंने तुमको सुनाया, झरझर बहता है झरना, और
1: हाँ
0: झरने की
1: बिल्कुल
0: बात हम
1: यार,
0: लोग कर ही रहे
1: हाँ
0: थे।
1: सही बोला आपने।
0: और देखो मानसून की बातें हम कर रहे हैं, तो मानसून में एक और परेशानी होती है, जैसे कि स्किन से संबंधित परेशानी
1: हाँ
0: होती है। कई बार हमें ये समस्या हो जाती है हमारे स्किन पर, त्वचा पर, जैसे स्किन एलर्जी, रैशेस, दाने, मुहासे, और ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, घरों में जो है सदियों से सौंदर्य बढ़ाने के लिए हल्दी और चंदन का उपयोग किया जाता रहा है। इनको सही तरीके से अगर प्रयोग करने से जो है हमारी त्वचा स्वस्थ, स्वच्छ और आकर्षक बनी रहती है। हल्दी में कर्क्यूमिन होने के कारण यह एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इससे मुहासे, त्वचा की लालिमा तथा प्रदूषण के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। इसी तरह चंदन अपनी शीतलता और सौम्य सुगंध के लिए जाना जाता है। इससे त्वचा को आराम और ठंडक मिलती है और ये त्वचा को ताजगी देने और अतिरिक्त तेल नियंत्रण करने में सहायक होता है।
0: बिल्कुल, हम सब लोग जानते हैं दादी नानी के नुस्खे, हम लोग कह सकते हैं हमारे घरों में हमेशा से उपलब्ध होते हैं, और ये सब हम लोग करते भी हैं। और हल्दी जो बेहद अच्छा है, अगर हल्दी का आप पेस्ट बेसन के साथ मिलाकर लगा सकते हैं चेहरे पर, तो ये काफी आपको आराम भी देता है, और साथ ही शहद भी इसके साथ, और चंदन भी बहुत अच्छा एक पेस्ट बन सकता है। चंदन, हल्दी, बेसन, शहद मिला के आप पेस्ट बना सकते हैं, जो कि आपकी त्वचा को चमक तो प्रदान करेगा ही, साथ ही साथ आपकी जो स्किन रैशेस है, एलर्जी है, उससे भी आपको राहत
1: राहत मिल जाएगी
0: मिलेगी।
1: बिल्कुल, और इन दोनों की जो सुगंध से मानसिक शांति भी मिलती है। मानसून के दौरान इन दोनों का जो प्राकृतिक उत्पादों को विशेष तौर पर चेहरे पर लगा सकते हैं और जो आपकी त्वचा संवेदनशील है,
0: हाँ, सेंसिटिव,
1: हाँ, तो उनमें लगाने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। पहले आप अपने हाथ पे या
0: हाँ,
1: कहीं पे लगा के देख ले कि आपके स्किन पे किसी तरह का कोई उसका साइड
0: एलर्जी तो
1: इफेक्ट तो
0: नहीं।
1: नहीं हो रहा है ना। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो हल्दी और चंदन जो है बहुत ही उपयोगी हैं हमारे स्किन के लिए, तो इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं।

0: जैसा कि हम अमृता बातें कर रहे हैं मानसून की, तो मानसून का जो मौसम है ना, इस समय जो है हम लोग पौधे लगा सकते हैं।
1: जी
0: ये इस
1: बिल्कुल।
0: समय बहुत अच्छा समय होता है पौधों को
1: पौधों
0: लगाने
1: के
0: के
1: लिए,
0: लिए।
1: और पौधे जो है इस वक्त आसानी से लग भी जाते हैं ना, तो अगर जिनको भी शौक है बागवानी का, तो वे भी अपने घर पे फूल के भी जो पौधे हैं इस समय लगाएं, तो वे अच्छे से लग जाएंगे। इसके अलावा जो अगर पेड़ के भी शौकीन हैं, जिन्हें है कि हमें पेड़ भी लगाना है,
0: हाँ,
1: तो वो भी इस समय का लाभ उठा सकते
0: और इस
1: हैं।
0: समय कई लोग जो है पौधारोपण का कार्य करते भी हैं। जैसे कई जगह जाकर स्कूलों में भी पौधारोपण किया जाता है, जहाँ जहाँ उनके जगह है वहाँ पे वो पेड़ लगाते हैं, फलदार भी लगाते हैं। और गांव में भी लोगों को पेड़ पौधे बांटे जाते हैं कि इस समय आप पौधे लगाइए। देखिए, एक तो क्या होता है कि पौधे लगाने से जो बढ़ते हैं तो उससे हमको छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और फलदार पौधे लगाने से तो दोनों चीज़ें मिलती
1: बिल्कुल।
0: हैं, तो ऑक्सीजन भी हमें मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप भी इस समय एक पौधा तो
1: जरूर,
0: जरूर
1: बिल्कुल।
0: लगाएं।
1: हर व्यक्ति अगर एक पौधा लगाए तो समझिए कितनी ज्यादा पौधे की संख्या हो जाएगी, और पौधे जो है पेड़ बनेंगे, और हम लोग तो अच्छे से जानते हैं कि उसका वातावरण पे जो है कितना अच्छा असर
0: पर्यावरण
1: होता
0: पर
1: है।
0: बहुत अच्छा असर होता है, क्योंकि ये सारे जो पर्यावरण अभी जो बिगड़ रहा है ना, ये हमारे ही चलते बिगड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हमने कई साल पुराने, कितने पुराने पुराने पेड़ जो है वो
1: वो काट दिए,
0: काट दिए
1: वो
0: हैं।
1: अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, है ना? तो
0: क्योंकि अब वो पेड़ उतने जल्दी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसी का नुकसान तो हमें अभी झेलना पड़ रहा है ना, कि बारिश समय पर नहीं हो रही है और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है।
1: इस साल भी आप देख रहे कि मानसून जैसा होना चाहिए वैसा
0: वैसा नहीं
1: नहीं
0: आया,
1: है।
0: बहुत देर से आया, जबकि मानसून शुरू हो जाता था। अभी 2 दिन बारिश हुई है, लेकिन आगे कितनी बारिश होगी ये पता नहीं
1: पता नहीं,
0: लगता।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमको, हम तो अपनी अभी तक की जीवन जी चुके हैं, लेकिन हमारा जो आने
1: आने
0: वाले जो
1: वाली जो
0: बच्चे
1: पीढ़ियां
0: हैं,
1: हैं,
0: पीढ़ी
1: बिल्कुल।
0: है, उनके लिए हमें ये करके देना है कि हम पेड़ जरूर लगाएं, और अभी से ही लगाने की शुरुआत करें। तो अमृता, देखो हमारा कार्यक्रम का समय जो है वो पूरा हो चुका
1: बिल्कुल,
0: है,
1: हमारी बातें बिल्कुल खत्म नहीं हुई, लेकिन
0: खत्म
1: हमारा जो समय है वो अब
0: हो रहा
1: खत्म हो
0: है।
1: रहा है,
0: तो हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। अब अपनी दोस्त रचना
1: और अमृता को दे
0: इजाजत,
1: इजाजत।
0: जोहार,
1: जोहार,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं अपनी पसंद के गीत, जिसे वो हमें खत द्वारा लिख भेजते हैं। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हंसते जख्म फिल्म का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और सुनना चाहा है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, गोंदा टाउन कांकेरोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया भगत।

अगला गीत सुनना चाहा है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, प्रतीक प्रज्ञा, बठिंडा रोड डरवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, ये सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में उजाला फिल्म का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया। इस फिल्म का आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, और इस गीत को सुनना चाहे ग्राम बड़बुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनी मनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अपना देश फिल्म का ये गीत, और इस गीत को सुनना चाह है सुंदर खेल राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकाश नरवाड़े, आकाश कुमार मलोट केम पंजाब से सतीश, सीमा अनमोल, लखविंदर सिंह, महावीर संधू और रमेश मिकलानी।

अब आपको सुनवाते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की और सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया, खसावा झारखंड से, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गनवानकर, श्रीमती सरिता गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गनवानकर, प्रणीता गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर और कुमारी ध्वनि गनवानकर।

इसी गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनुए सब श्रोता बहिन बन के सुमन बहिन बटले जोहार आसरा करीला सब सुनुए बहिन मनक हाल खबर ढक दे नगद होवी है नी संगे है सुभाषनी बहिन राउर को हो जोहार
1: जोहार सुमन बहिन संगे है सब श्रोता बहिन मन के भी सुभाषनी बहिन बटले जोहार।
0: सुभाषनी बहिन आजकल देखो कि हमरे का जो जीवन है एकर जो भागम भाग है बहुत बकरा देखे ले मिलल और खास करके जब हमरे घर और बाहरे दुयो बटे काम के सही बेरा में करेक और छुआ मन अगर घर में छोट हैं तो उ मनक भी ध्यान रखेक संगे संगे बड़ बुजुर्ग हैं तो उ मन कर भी ध्यान रखेक और बाहरे कर काम इस सब के सही तरी से व्यवस्थित रखेक ले हमरे के सप्ताह पहले से ही अगर हमरे ओकर बारे में सोची ल और एक योजना बनाए ले भी ला तो ये हमरे लिए बहुत आसान हो जाएला अपन जिंदगी के सब काम के व्यवस्थित करके आगे बढ़े में है नी। और एक सप्ताह पहले से योजना बनाए कर हमरे के आदित भी अपन में करे चाहिए। सप्ताह में देखो कि एगो दिन ऐसा हो चाहिए कि 20 मिनट निकलाए कि जो वर्तमान सप्ताह है उकर संगे संगे जो आवे वाला हफ्ता है उकर भी योजना हमरे के बनाए बटे ध्यान देवे चाहिए और आगे कर योजना बना ले हर काम के करेक में एक आत्मविश्वास भी अपन अंदर भर जाए और हर काम के आसानी से निपटाए सकीला हमरे और देखो कि जीवन में जे बहुत भागम भाग है सेकर से भी हमरे आसानी से निपट सकीला और जीवन के आसान कर सकीला।
1: सही कहती सुमन बहिन एगो साप्ताहिक योजना हमरे के अपन कार्यालय कर के व्यवस्थित लक्ष्य के ध्यान में केंद्रित करेगा ताकि जे अपन व्यक्तिगत अनुभव और रचनात्मकता हो भी और प्रभावी तरी से बेरा निकला में मदद करेला और एगो संपूर्ण और प्रभावी साप्ताहिक योजना हमरे के अपन दैनिक कार्य के व्यवस्थित करे कर सबसे बढ़िया कुंजी है और सप्ताह में करेक वाला जे भी कार्य है उके हमरे एक जगह अगर लिख के राखती तो उ काम के याद करके समय पर करेक आसान हो जाएला। ई काम छूट गेलक चाहे भुलाए गेली तो ई काम के करेक इकर डर नहीं रहेला।
0: एकदम सही कहली अगर सब चीज व्यवस्थित तरीके से लिखल रही तो उके हमरे एक बेर पढ़ लेब देख लेब और सोच लेब कि ई काम के हमरे के आज करके निपटायक है तो हमरे के जे काम जे सबसे पहले जे काम सबसे जरूरी है और जेके आइजे करेक जरूरी है उसन काम ऑफिस कर काम भेलक चाहे छुआ मनक फीस भरेक है चाहे कौन में बिल मन के भरेक है तो वो काम जे सबसे जरूरी है उके सबसे पहले शेड्यूल में शामिल करेक चाहिए। उकर बाद ही कुछ काम जरूरी तो होवेला लेकिन कुछ समय बाद भी कर ले काम चल सकेला उसन काम के उकर बादे लिखो और कुछ है हमरे जे की दूसर से भी हमरे उके करवाए सकीला तो इसन काम के अंत में डालू और अगर हमरे एक सप्ताह दिन कर काम के सोच समझ के सूझबूझ से करीला तो अपन जे दैनिक जीवन में बहुत कन झंझट से छुटकारा भी पाए सकीला और एक बात ये भी कहे चाहिला कि हर दिन तनिकन समय निकलाए के जे भी जे शेड्यूल हमरे बना ही उके योजना जे बना ही उके जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकीला काले की मान लो कि आज जे काम कर ली उके अगर दूसर दिन में गिन कुछ जरूरी काम आया जाए तो उके हमरे उकर में डाल सकीला और उके याद करके कर सकीला तो सेले उके भी एक बार ध्यान में ले लेवे चाहिए और उके शामिल कर लेवे चाहिए। एकर संगे हमरे के बहिन मन के अपन ले भी कुछ समय जरूर से निकला चाहिए जेकर में हमरे अपन स्वास्थ्य कर अपन घर कर चाहे अपन जे भी पसंदीदा काम है उके कर सकू।
1: जी हाँ बहुत बढ़िया बात कहली सुमन बहिन हमरे के काम के बाइट के चले चाहिए ताकि सुविधा हुए और हमरे के हर दिन कुछ समय अपन ले जैसन सुमन बहिन बता ले कि करेक चाहिए और साप्ताहिक योजना बना ले हमरे बगरा उत्पादक बन सकेला और अपन कार्यभार के बेहतर तरी प्रबंधित कर सकेला और कुछ कुल मिलाए के हमरे जे भी चीज हमरे के मायने रखेला उकर ले पूरा समय निकला सकेला और योजनाबद्ध तरीका से काम कर ले काम कर संगे आराम और व्यक्तिगत जीवन भी आसान हो जाए।
0: सही कहली तो देखो सुभाषनी बहिन जब जीवन में हमरे कर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलीला और सप्ताह कर जब शुरू दिन रहेला इतवार कर दिन भेलक तो आराम में चल जाला और उहे दिन अगर हमरे सोच लेती कि बाकी जे 14 दिन आवे वाला है काम कर है उकर में हमरे अपन जीवन के कालखे तय करती कि कौन काम के कैसे करे है तो अपन जीवन के बड़ा सुकून से बिताए सकेला कोई भी भागम भाग नहीं होगी और सब काम के तरीके से निपटाए सकेला
1: और सबसे बड़ी बात है नी कि तनाव कम हो जाएला।
0: हाँ आज के जीवन में तो सबसे बेसी कहो कि दौड़ भाग में तनाव सबसे बेसी रहे ना, तो काम के व्यवस्थित करके चलब, सोच के चलब और एक रूटीन जिंदगी, जैसे छुए मन का देखो नहीं, जब स्कूल उमन जाए ना तो एगो रूटीन में बंधल रहे है नहीं स्कूल में कि आज ये किताब में ये चीज के पढ़ाए के ये करे के, तो वह तरी शेड्यूल अगर हमारे घर में भी अपन जीवन में अनुशासन कर उतरो और योजना बना के चलू तो सब कुछ जिंदगी आसान हो जाए। तो चलू गोठियाले तो गोठियाते रहब, चलू हमारे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ी ल और सुनी ल एगो नागपुरी लोकगीत के यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: तरी शेड्यूल अगर हमारे घर में भी अपन जीवन में अनुशासन कर उतरो और योजना बना के चलू तो सब कुछ जिंदगी आसान हो जाए ला।
1: हाँ।
0: तो चलू गोठिया ले तो गोठियाते रह, चलू हमारे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ी ला और सुनी ला एगो नागपुरी लोकगीत के यशोदा देवी और संगी बनकर गावल।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: रहे विज्ञापन संदेश, इकर पहले हमने सुन ली यशोदा देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत, और अब चलो एक भेंटवार्ता सुन ले वीला। इकर में हमने जानकारी करी थी कि समय का प्रबंधन का लक्ष्य करिक चाहिए, इकर बारे बताता है रश्मि चौधरी और इनका से बातचीत कर रहे हैं सुभासनी बहिन।
7: कहा जाता है कि समय और समुद्र का ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, यानी समय रहते हमें वो सब कुछ कर लेना है जो आवश्यक है। एक बार समय निकल गया तो वह लौट कर नहीं आता। आज के समय में अक्सर हम और आप यही कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हम सभी एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर समय की कीमत हमने नहीं जानी तो हम अपने कार्य में सफल ही नहीं हो पाते। किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। आज हम समय प्रबंधन पर ही विस्तार से बातें करेंगे। हमारे साथ हैं रश्मि चौधरी जी, जो कि एक शिक्षिका हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार
8: जी। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
7: रश्मि जी, सबसे पहले हम आपसे समय प्रबंधन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये जानना चाहेंगे।
8: समय प्रबंधन के बारे में कहें तो समय प्रबंधन का सीधा संबंध आपकी या कह ले हमारी सफलता से है, हमारी मानसिक शांति से है और हमारी लाइफ की जो माने कह ले कि हमारी जीवन की जो गुणवत्ता से है उससे संबंध रखता है। तो जब आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है तो आप संबंध रखता है
7: जी।
8: तो जब आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है तो आपका दिमाग भटकता नहीं है।
7: नहीं।
8: काम को आखिरी समय के लिए टालना ये हम सबकी आदत होती है
7: जी।
8: तो अगर हम समय प्रबंधन को सीख जाए, समझ जाए तो समय पर काम पूरा हो जाता है हमारा, और समय पर काम पूरा होता है तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, उथल पुथल नहीं रहती है कि कब हमें ये काम करना है, अभी ये काम बचा हुआ है, उसे हम शांत रहते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है
7: जी।
8: तो ऑफिस हो या पढ़ाई के बाद अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए हम पर्याप्त समय निकाल पाते हैं, अपनी अच्छी नींद ले पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सब कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए या योग के लिए तो सब समय ही नहीं है हमारे पास
7: जी, जी।
8: या हमारी हॉबीज जो रहती है उसके बारे में कहते हैं कि कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर हम समय प्रबंधन सीख जाए तो इसके लिए हम आसानी से समय निकाल पाते हैं और जो जो हमारे लक्ष्य हैं, जो डेली कह ले या हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, वो हम पाने में सक्षम हो पाते हैं अगर हम समय प्रबंधन के अनुसार अपने काम को बांट लें। तो जो लोग समय के पाबंद होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पर हो या समाज में हो ज्यादा सम्मान पाते हैं, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। समय की कमी होने पर लोग प्रेशर में आ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं
7: जी।
8: तो इसीलिए समय प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। समय प्रबंधन हमको ये सिखाता है कि बिल्कुल शांत मन से, अच्छे दिमाग से हम कोई भी डिसीजन ले सके और लाइफ में आगे बढ़ सके
7: जी। बिल्कुल सही कहा आपने रश्मि जी, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है और डिजिटल युग भी है, डिजिटल दुनिया है, तो आप समय प्रबंधन को किस तरह से परिभाषित करती हैं आज के समय को अगर हम देखें तो?
8: आज के समय में समय प्रबंधन का मतलब केवल घड़ी देखकर काम करना या व्यस्त रहना नहीं है
7: जी।
8: इसका वास्तविक अर्थ है अपनी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में व्यवस्थित करना, हमारी क्या प्रायोरिटीज है उसको समझना
7: जी।
8: आज जब हमारे पास ध्यान भटकाने वाली, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चुनना कि उसमें से हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो हमारे काम की चीजें हैं उसको प्राथमिकता देना और जो कम जरूरी चीजें हैं उसको सेकंड में रखना या फिर जो बिल्कुल जरूरी नहीं है उसको हटा देना। तो इस तरह का जो जो काम हम अगर कर रहे हैं तो यही समय प्रबंधन है, असली समय प्रबंधन इसे ही हम कह सकते हैं, आज की जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार।
7: आधुनिक युग में समय का प्रबंधन न करना सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को प्रभावित करता है, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
8: जब हम समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारे ही ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है, हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, कोई भी काम हमसे ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना जो गुस्सा है अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसका गुस्सा हम दूसरे पर निकालते रहते
7: जी,
8: हैं
7: जी।
8: तो जो हमारा जो आखिरी समय जो डेडलाइन होता है उसे पूरा करने की हमारी हड़बड़ी होती है क्योंकि हमने समय को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया है और जिससे हम चिंता, अनिद्रा और मेंटल रूप से परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे ये हमारी मानसिक बीमारी के रूप में जाने लगती है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने समय को पहचाने, समय का प्रबंधन करना सीख जाए तो मानसिक रूप से हम बिल्कुल फ्री रहते हैं
7: जी।
8: हमें अपने आप पर हमारा कंट्रोल हो जाता है और हम चीजों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है और इसलिए हम ज्यादा हम एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी गलत, कौन सा डिसीजन हमें सही रास्ता दिखाएगा, कौन सा डिसीजन गलत होगा। तो इस चीज का फैसला हम कर सकते हैं अगर हम समय प्रबंधन को समझ जाए, सीख जाए
7: जी।
8: तो इस तरह से जो समय प्रबंधन हमें मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को हमारा प्रभावित करता है और अगर हम समय प्रबंधन को का समय का प्रबंधन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ जाता है, मानसिक बोझ बढ़ जाता है और हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं।
7: रश्मि जी, कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो बहुत अच्छा टाइम टेबल या शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन 2-4 दिन में उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है या जो भी कारण रहता है, तो वो अपना अपनी निरंतरता बनाए रखें कैसे, वो मैनेज करें और कैसे अपनी एक जो जो कमी रह जाती है उसे उसको कैसे दूर कर सकते हैं?
8: लोग अक्सर बहुत कड़ा शेड्यूल बना लेते हैं, समय प्रबंधन के नाम पे उसे समझ नहीं पाते हैं जो बोलो। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए। शुरुआत में आपको पूरे दिन को बांधने के बजाय केवल सुबह के, आप जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले के 2 घंटों को लेकर चले शेड्यूल में, अपने जो जितने भी अन्य जो काम जरूरी नहीं है उन कामों से ब्रेक ले, ये जरूरी है आपके लिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं
7: जी।
8: और हर रविवार या जो भी आपको अच्छा दिन लगे उस दिन आप छुट्टी ले, यानी कहने का मतलब 10 मिनट निकाल कर देखें, अपने जो समय प्रबंधन किया है उसके अनुसार निकाल कर देखें कि इस हफ्ते आपका कहाँ कहाँ समय बर्बाद हुआ, यानी कि एनालिसिस करें कि आपने जितने भी एक वीक तक जो समय प्रबंधन के अनुसार आपने जो हर चीज को बांटा है, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा जब शुरुआत आप कर रहे हैं कि कहाँ पर मैंने किस तरह की गलती की है या कहाँ पर बहुत अच्छा मैंने किया है, तो उसे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक बार कि उसको एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ मुझसे चूक हुई है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करें, और जहाँ पर कुछ नहीं आपको लगता है कि नहीं ये मेरा काम बड़ा अच्छा है तो उसे उसे सीख लें, उसे अपनाएं, उसे और इस तरह से करके आप अगर आगे बढ़ेंगे शुरुआत में तो आपका जो टाइम टेबल है या जो आपने शेड्यूल बनाया है उसमें आपको उसको फॉलो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसे अच्छी तरह से निभा पाएंगे।
7: बिल्कुल
8: जी,
7: कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई महत्वपूर्ण काम आ जाते हैं, बहुत से काम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसे कैसे तय करें कि हम कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ये हमें बताएं।
8: इसके लिए आपको जो आपके काम है उसको बांटना पड़ेगा। और कैसे बांटें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो आपको आपके काम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है तो उसको उन्हें तुरंत ले, यानी कि उन्हें पहले नंबर पर रख सकती है, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है लेकिन जरूरी नहीं है तो उन्हें आप समय के साथ या फिर तारीख के साथ यानी कि कैलेंडर में उसे शेड्यूल कर दे कि ये

0: इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे करना है इतने समय में या इतने तारीख को,
1: जी
0: और जो जरूरी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, दूसरे को डेडिकेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, किसी को दे सकते हैं कि ये काम बहुत जरूरी है तो थोड़ा हेल्प कर दो और ये काम कर दो,
1: जी
0: और जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आप उसे अपने लिस्ट से पूरी तरह से निकाल ही दे, हटा दे उसे।
1: बिल्कुल
0: और जब आप एक बात आप ध्यान रखें कि जब आप सुबह जब काम शुरू कर रहे होते हैं तो काम शुरू करने से पहले ही बस केवल 5 मिनट का समय निकालें और डू लिस्ट बनाएं, यानी कि आपको क्या क्या करना है इसका लिस्ट बनाएं। तो ये जो आदत है आपके लिए बिल्कुल एक तरह से कहें तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने कामों को शेड्यूल करेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी
1: जी
0: और आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इतने सारे काम है तो मैं किसे पहले करूं, किसे बाद में करूं, किसे छोड़ दूं। जी
1: जी रश्मि जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, और जितने भी सवाल थे मन में, मुझे लगता है कि बहनों के भी जो सवाल होंगे उसके उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा। रश्मि जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी श्रोताओं से कि समय दुनिया की एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता,
1: बिल्कुल
0: यानी कि समय निकल गया फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा खोकर आपको वापस मिल सकता है, लेकिन अगर ये बीता हुआ पल आपको कभी वापस नहीं आता, समय बीत गया तो वो बीत गया।
1: जी
0: समय का इसलिए प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट सीखें, जाने समझें। प्रबंधन करने का मतलब अपनी जिंदगी को बंधनों में जकड़ना नहीं है। आप ये ना समझें कि हम बिल्कुल बंध गए हैं, बल्कि अपने सपनों को, अपने परिवार को और अपने लिए, खुद के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। इसलिए आज से ही अपने समय के मालिक आप खुद बने और
1: जी
0: सोशल मीडिया या परिस्थितियों को अपना समय मत दी समय तय मत करने दीजिए। डिजिटल युग का समय है, जमाना है, तो जरूर आप डिजिटल जो जितने भी डिवाइसेस हैं या डिजिटल सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें। इसके बिना शायद हमारा अब काम भी संभव नहीं हो पाता। हावी मत होने दीजिए, आप ये मत करें कि वो हमारे लिए समय तय करे,
1: बिल्कुल
0: आप उसके लिए समय तय कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से समय प्रबंधन आपके जीवन में खुशहाली लाता है। जी
1: बिल्कुल, बहुत खूब रश्मि जी, बहुत ही अच्छी आपने बातें साझा की टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के विषय पर। आशा है हमारी बहनें भी लाभान्वित होंगी। रश्मि जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
2: ये रहे रश्मि चौधरी जे हमरे के समय के प्रबंधन का लखे करेक चाहिए, इकर बारे बतात रहे हैं हमरे के बहन बन के, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं सुवासनी बहन। तो सुवासनी बहन, देखो हमरे बहन बन के सोना से तो बहुत प्यार होएल,
3: हाँ बहुत
2: और
3: प्यार है।
2: देखो कि जब भी कोई पर्व त्योहार आवी चाहे जे भी हुई तो सोना किने सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमके
3: हाँ
2: देवेला।
3: हाँ
2: तो लेकिन इकर किने में भी सावधानी रखे बहुत जरूरी है। तो देखो इकर में रोरे का कहे चाहे लेकिन का लखे हमरे सावधानी रखब
3: हाँ
2: कि सही सोना किनू
3: हाँ
2: और उके
3: हाँ
2: सही इस्तेमाल करूँ।
3: हाँ काले कि आजकल बहुत एकर में काला बाजारी भी हुआ थे, तो सोने के खरीदारी में हमरे के हमेशा सावधानी रखे चाहिए। और जो भारतीय मानक ब्यूरो कर लोगो है हॉलमार्क, कैरेट कर शुद्धता, अद्वितीय पहचान संख्या और मेकिंग चार्ज कर स्पष्ट जानकारी लेवे चाहिए। और सोना किने के बिना मुख्य रूप से जो सोना जहाँ से हम किना थी वहाँ उकर ध्यान रखे चाहिए कुछ बात मन के, वो बात मन के रावरे बताओ।
2: सही कह दी। देखो हमरे के सबसे पहला ध्यान रखे चाहिए कि बिना हॉल मार्किंग वाला सोना नहीं किने चाहिए, है नी। और ये 6 अंक वाला अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर जगह हमरे कहिला,
3: हाँ।
2: वो बहुत जरूरी है। इके हम जे भी मन की न था सोना उमन रावरे मन BIS केयर से सोना कर शुद्धता और उकर पूरा जानकारी ले सकीला,
3: हाँ।
2: और जे सोना कर वास्तविक वजन है उकरे भुगतान हमरे के करे चाहिए। देखब कि बहुत कन सोना है जेकर में कि कहीं कहीं नग लागल रहेला,
3: हाँ,
2: चाहे
3: हाँ।
2: पत्थर या मोती मन लगाल रहेला, तो उके भी साथे साथे तोल दो, है ना। और
3: हाँ।
2: सोना का भाव में तो इकर भी ध्यान रखे है कि जे सोना कर असली है वजन है उखे ध्यान दो, और पत्थर मोती मन कर वजन के अलग कर दो। और जेवर से जे भी ज्वेलर है उकर से हमरे के हमेशा पक्का बिल लेवे चाहिए, जेकर से कि हमरे अपन सामान जे भी सोना कीना थी उकर शुद्धता वचन और HUID नंबर मेकिंग चार्ज और जे किनली उ दिन कर सोना कर भाव जरूर लिखवाए चाहिए, ताकि हमरे जब भी उके बेचे जो चाहे एक्सचेंज करू तो उ बिल हमरे के काम आवे। ई सब बात कर जरूर ध्यान रखे चाहिए, है नी सुभाषनी बहन। तो चलू हमरे चलते चलते एगो गीत के भी सुन लेवेला नागपुरी में, और ई गीत हके केतकी देवी और संगीमन कर गावल।

0: सुभाष नहीं बहन, देखो बेरा जे है कहत है चल एक और हमरे का कार्यक्रम के बेरा भी सिरा थे सेले गीत के हमरे आधे सुने पार ली, आगे फिर सुना और अपन बहन मन से फिर अगला सोमवार की गुठिया चलो इकर ले, तब तक ले विदा और जोहार
1: जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लेडीज वर्सेस रिक्की बहल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं बेनी दयाल और रणवीर सिंह की। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सलीम सुलेमान का संगीत है।

0: 跟你。
1: अगला गीत आइए अब सुनते हैं, राहत फतेह अली खां की आवाज में, फिल्म है सिम्बा। रश्मि विराग ने इस गीत को लिखा है, तनिष्क बागची ने संगीत दिया है।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है दिल धड़कने दो और गायक कलाकार हैं यशिता शर्मा, मनीष कुमार टिपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं बेफिक्रे फिल्म का, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और करालिया मोंटेरियो का, जयदीप साहनी के बोल हैं विशाल शेखर का, संगीत है

0: शेसी चढ़ गई।
1: आइए सुनते हैं गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म का ये गीत। आवाज है साहिल हड़ा की, गीतकार है सिद्धार्थ करीमा और संगीतकार है संजय लीला भंसाली।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाते हैं धुरंधर धुरंधर फिल्म का। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की, इरशाद कामिल के बोल हैं, शाश्वत सचदेव का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से भारत और उन देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: श्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे। इस यात्रा के दौरान आर्थिक, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए सीआईडी झारखंड ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों के मामलों में शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से कार्रवाई करना, मानव तस्करी के मामलों को शीघ्र पहचान, पीड़ितों की सुरक्षित बरामदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,164 लोगों की जांच में 108 मलेरिया संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी दर घटकर 2.6% रह गई, जबकि 1 जुलाई को 3,240 संदिग्धों की जांच में 326 मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी दर 10.1% थी। 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में 218 की कमी और पॉजिटिविटी दर में 7.5% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गोड्डा महिला कॉलेज में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली एवं सतत विकास लक्ष्य विषय पर कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सम्मेलन में अमेरिका, नेपाल और अफ्रीका के प्रोफेसर भी ऑनलाइन जुड़े और अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक अली ने देश की खाद्य सुरक्षा पर चिंता जताई। वहीं महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन लता ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
2: हमारा जो झारखंड है वो एक तरह से यहाँ का जो जल, जंगल, जमीन और यहाँ की जो दवाएं हैं और मड़वा का खेती है, यहाँ के जो लोग हैं वो सब ये बताता है कि हम लोग सतत विकास में योगदान कर रहे हैं और बिना पारंपरिक ज्ञान के वो नहीं होगा। यहाँ के लोग उस पारंपरिक ज्ञान से विकास में योगदान कर रहे हैं।
0: बीआईटी मिश्रा आज से 10 जुलाई तक इमर्जिंग ट्रेड्स इन स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक कंप्यूटेशनल और सांख्यिकीय तकनीकों का विश्लेषण कर प्रतिभागियों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को विकसित करना है। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीकों और उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। यह पायलट स्तर की रिएक्शन प्रणाली नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और अन्य कृषि नैनो उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई है। संस्थान के निदेशक ने इसे उपलब्धि पर अनुसंधान दल को बधाई दी है। झारखंड समेत समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से लौटते समय गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीडी बार के मैनेजर विजय महानंद सहित अमित लोहार और लखिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गैंगस्टर प्रिंस खान के सदस्य के साथ आज तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी शिवराम उर्फ शिवा घायल हो गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शिवराम उर्फ शिवा प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी।
4: के निवासी अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। यह हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
5: संयुक्त छापेमारी में अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया।
0: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 78,258 पर और निफ्टी 149 अंक बढ़कर 24,419 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश, तेज हवा, वज्रपात और जल भराव की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा किसानों को सतर्कता बरतने की दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों के सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर, जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर

प्रतिशत से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए मनोरंजनी के अंतर्गत सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गिरजा देवी से ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे गिरजा देवी से अभोगी कन्नड़ा में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम के गाए कुछ गीत।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: across the world. He laid particular emphasis on the security, safety and dignity of women devotees and reviewed preparedness for crowd management, multi-layered security, traffic regulation and other essential civic services. Expressing confidence in the collective efforts of all stakeholders, the chief minister said every ritual should be conducted with precision and according to schedule to ensure a flawless Rath Yatra, scheduled to be held on 16th of this month. Prakash Das, Akashvani.
1: Experts on consumer protection, law and policy in Geneva and Switzerland today. Our correspondent reports that the three-day session being organized by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday.
2: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital, Kiev, this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which U.S. President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the five-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovic Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Arina Sabalenka 6-2-7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Arina Sabalenka. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
5: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
3: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
3: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
6: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
7: जगन्नाथ
8: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
7: जगन्नाथ
3: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
9: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
3: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
10: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
3: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में

0: जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
3: दम्भ का स्तंभ खंधम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयकारी गति से बिन न खेल।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, साथ ही साथ हमारे फौजी भाइयों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में. तो सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत फिल्म रोजा से. आवाज है हरिहरन की, पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और एआर रहमान का संगीत है.

अगला गीत आइए अब सुनते हैं जंगली फिल्म का। आवाज है मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस और आवाज है मोहम्मद रफी की।

फौजी भाइयों के लिए आखिरी गीत हम लेकर आए हैं शक्ति फिल्म का। आवाज है लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल है आर डी बर्मन का, संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस पर कहा है कि सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग ढांचा शुरू किया गया है। श्री शाह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज झारखंड सहित पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। इस अवसर पर रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया।
2: पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मना रहा है। इस बारिश में भी हम ऐसे अपने प्रणेता जिनके मंत्र से हम सब ऊर्जा मिलती है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया के सबसे यंगेस्ट कुलपति रहे। मात्र 33 साल में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और नेशन फर्स्ट, वही भाव हमेशा रहा है।
0: उधर हजारीबाग के सांसद सेवा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसी मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी कल पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा में बीर बेंदिया फोरलेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।
3: मैं निरीक्षण करने के लिए आया, वर्षों पुरानी मांग थी। यहाँ लोग कई बार जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से मांग कर रहे थे कि सर पुल बना दी, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें थी, एक हादसा भी हुआ, 14 लोगों की जान चली गई, तो वो दर्दनाक हादसा था। उसी समय हमने कहा था कि नहीं, हम अपने एरिया में जो जान गई उस पर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पुल सेंक्शन हुआ और 95% पुल बनकर तैयार हो गया है।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जमशेदपुर प्रधान डाकघर में स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत हुई है। अब ग्राहक बिना लाइन में लगे पार्सल का वजन, पता दर्ज कर यूपीआई या कार्ड से स्वयं ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि इस पहल से डाक सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी।
4: इस मशीन का खास बात है कि कोई भी पब्लिक कस्टमर इसमें आकर स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं, इससे ग्राहकों को काफी सुविधा होगी।
0: मौसम। रांची, धनबाद और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में अगले 3 घंटों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को खेतों में न जाने की अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की रांची मेलोडीज में हम आपको सुनवाएंगे चेतन आनंद के फिल्मों के कुछ गीत। आज उनकी पुण्यतिथि है, 6 जुलाई 1997 को उनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे चेतन आनंद। बॉलीवुड फिल्मों को स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय भी चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सके थे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग का।

0: कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या है, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी,
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
1: विद्यार्थी को
0: संकोच
1: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
0: जी।
1: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो
0: जी
1: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।

0: हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी हैं।
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि अलावा एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए।
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक
1: जी
0: कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या
1: जी
0: रहेगी।
1: हाँ जी
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम
1: बिल्कुल
0: बोलते हैं,
1: जी हाँ
0: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा विद्यार्थी में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो
1: क्योंकि
0: इससे
1: अक्सर
0: भी अच्छा
1: होता
0: कर
1: नहीं है।
0: सकते
1: जी
0: हो।
1: हाँ
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी, एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है
1: हाँ
0: और
1: मनोबल
0: वो
1: बढ़ता है।
0: मनोबल बढ़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए
1: जी
0: कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए,
1: जी
0: समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे।
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली।
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर
1: जी
0: आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं,
1: जी
0: उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है,
1: जी
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद

0: करते हैं ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है, होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करने और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता
0: तो,
1: है
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो

0: हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,

8444-0632 8448440632 ये हमारे मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चेतन आनंद के कुछ फिल्मों के गीत। आज उनकी पुण्यतिथि है। 6 जुलाई 1997 को उनकी मृत्यु हुई थी। वे एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय भी चेतन आनंद को ही जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे और देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। तो आइए सुनते हैं चेतन आनंद की ही निर्देशित की हुई फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गीत।

चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चेतन ने लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखा था और वे वर्ष 1930 के दशक में पार्टी में शामिल भी हो गए थे। उन्होंने दून स्कूल में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म फंटूश का ये गीत।

चेतन आनंद ने वर्ष 1940 के दशक के शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वे मुख्य भूमिका में भी थे। चेतन आनंद ने अभिनय छोड़कर फिर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास रच दिया। फिर उनकी फिल्म आई थी हकीकत। जी हाँ, हकीकत फिल्म जो थी, उन्होंने उस फिल्म की पटकथा भी लिखी थी और उस फिल्म को निर्देशित भी किया था और इस फिल्म को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत।

वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया था। अपने जमाने के सुपरस्टार देवानंद और निर्माता निर्देशक विजयानंद के बड़े भाई चेतन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में पहले कान फिल्म समारोह में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था और वे फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पहली फिल्म थी। नीचा नगर का शुमार भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में किया जाता है। और इसके बाद उनकी फिल्म आई थी हीर रांझा। तो आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

हीर रांझा फिल्म के संवाद कैफी आज़मी ने लिखे थे, और उनके द्वारा लिखे गए हीर रांझा के शायराना तरीके से लिखे गए ये संवाद बेहद लोकप्रिय भी हुए थे। चेतन आनंद से राजकुमारी की गहरी दोस्ती थी, और इसी वजह से चेतन के साथ उन्होंने कई फिल्मों जैसे कि हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हीर रांझा आदि में काम किया था। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी हंसते जख्म। हंसते जख्म की पटकथा भी चेतन आनंद ने ही लिखी थी, और इसे निर्देशित भी चेतन आनंद ने ही किया था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

1950 के दशक के शुरू में चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की और इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी एक अलग कंपनी शुरू की और इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम भी दिया। और 1981 में चेतन आनंद की फिल्म आई थी कुदरत और इसका कहानी लेखन और निर्देशन भी चेतन आनंद ने ही किया था। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की मुख्य भूमिकाएं थी जबकि राजकुमार, प्रिया राजवंश और विनोद खन्ना सहायक भूमिकाओं में थी। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि चेतन आनंद की पहली फिल्म जो थी नीचा नगर को सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में पुरस्कार मिला था सर्वोत्तम फिल्म के लिए। और चेतन आनंद ही ऐसे पहले निर्देशक थे जिन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था और उसके बाद राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर तक पहुंचे थे। तो आइए सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यही संपन्न होता है। आप ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। इस समय 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम का सरायकेला खरसावां जिले में सीधा प्रसारण देखा गया। जिला सहकारिता कार्यालय सहित विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लाइव संबोधन सुना। इस मुख्य समारोह में जिले की 3 लैंप्स समितियों के प्रतिनिधियों ने भी नई दिल्ली जाकर भाग लिया। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मांडर के करगे गांव में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत ग्रामीणों को एनडीपीएस अधिनियम, नशे के दुष्प्रभाव और ऋण पास तथा सीआईपी की विधिक सहायता क्लिनिकों की जानकारी दी गई। देवघर की मोहनपुर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने हाल ही में देवीपुर में हुई एक हत्या और कई लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह की पीरटांड पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मुन्ना लाल किस्को को गिरफ्तार किया है। डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में 28 जून को अपनी नवविवाहिता पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को नाले के पास छिपा दिया था। कोडरमा के डोमचांच स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज में आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज रांची में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुरेंद्र राम सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी नशा मुक्त समाज के निर्माण में।

जन जन की भागीदारी। अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता, इस विषय पर भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे। इस विषय पर आशुतोष शेखर से बातचीत करेंगे सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर है सिंधु मिश्रा का।

कार्यक्रम आओ साथ चलें की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर यानी नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की क्या भागीदारी है, इस पर विचार विमर्श करना चाहूंगी। श्रोताओं, नशा आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह परिवार, समाज और राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, ये हम सब जानते हैं। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवारों को भी तोड़ती है, सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण आज की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकताओं में से एक है। श्रोताओं, नशा मुक्त समाज की स्थापना केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, युवा, महिलाएं, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासन, सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। जब जन जन इस अभियान को अपना कर्तव्य मानकर आगे बढ़ेगा, तभी एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। श्रोताओं, अब इसके दुष्परिणामों की बात अगर करें तो सोचने समझने की क्षमता को नशा प्रभावित करता है। शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या तनाव दूर करने का साधन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति की आदत और फिर लत बन जाती है। नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों को भूलने लगता है। नशे के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कैंसर, हृदय रोग, मानसिक तनाव, अवसाद और अनेक गंभीर बीमारियां। सामाजिक स्तर पर अगर देखी जाए तो घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, अपराध, बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं भी इसमें देखी जाती हैं। श्रोताओं, आर्थिक दृष्टि से भी नशा व्यक्ति और परिवार को गरीबी और कर्ज के जाल में धकेल देता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि आज युवा वर्ग भी नशे की गिरफ्त में तेजी से आ रहा है। यह स्थिति राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत चिंतनीय है, क्योंकि युवा ही किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति होते हैं। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है। समाज का एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में यदि हो तो विकास की गति प्रभावित होती है। नशा मुक्त समाज केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। नशा मुक्त समाज में अपराध कम होते हैं, परिवारों में सुख शांति बनी रहती है, युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है और सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। ऐसे समाज में शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण एक सामाजिक आंदोलन के रूप में किया जाना चाहिए। परिवार किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है, यह हम सब जानते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि माता पिता स्वयं नशे से दूर रहें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के व्यवहार, मित्रों और गतिविधियों पर सकारात्मक निगरानी जरूर रखें, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें तनाव, असफलता और सामाजिक दबाव से निपटने के लिए उचित मार्गदर्शन दें। परिवार का स्नेह,

0: विश्वास और सहयोग बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है। शिक्षा संस्थानों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय समाज निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जरूर किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से बल्कि संगोष्ठियों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक किया जाना चाहिए। इस ओर हमारे शिक्षकों की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक होते हैं। वे विद्यार्थियों को सकारात्मक जीवन मूल्यों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। खेल, योग, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। श्रोताओं और खुद युवाओं की भागीदारी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली मानी जाती है। यदि युवा वर्ग नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व करे तो समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। श्रोताओं, नशा मुक्त अभियान से जुड़ी और हमारी चर्चा होगी, उससे पहले मैं बता दूं कि आज एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम आपकी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं और वह है अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। इस ओर प्रशासन के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस पर विशेष जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं पुलिस अधीक्षक गढ़वा श्री आशुतोष शेखर। तो आइए सर से लेते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी, और आपको भी नमस्कार और साथ ही सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: अभी देखा जा रहा है कि अफीम की खेती को लेकर बहुत सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि ये अफीम है क्या और इसके क्या दुष्परिणाम हैं?
1: अफीम की खेती की जो समस्या है, अफीम एक तरह का पौधा है जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म में, और ये एक पापावर सोमनीफेरम प्रजाति की पौधे को अफीम का पौधा कहा जाता है
0: जी।
1: अफीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी खेती कानून के तौर पर प्रतिबंधित है। पूरे देश भर में केवल दो जगहों पर इस खेती को सरकारी निगरानी में कराया जाता है, जो कि पूर्णतः मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। इसके अलावा उन दो जगहों को छोड़कर देश भर में अगर कहीं भी इसकी खेती होती है तो वो पूर्णतः इलीगल है, गैरकानूनी है और विधि के खिलाफ है। और इसी को लेकर एक विशेष एक्ट भी है सरकार की तरफ से, 1985 में बनाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसके अंदर इसकी खेती और इसका कोई भी प्रयोग एक्सेप्ट मेडिसिनल यूज जहां जहां रेगुलेटेड है, उसके अलावा इसका किसी भी फॉर्म में खेती करना और किसी भी फॉर्म में यूज करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
0: तो ये प्रतिबंध लगाया गया है कानूनन, लेकिन सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हैं या दुष्परिणाम सामने देखे गए हैं?
1: अभी तक जो हम लोगों ने झारखंड राज्य में और विशेषकर रांची जिला में देखा है, जो दुष्परिणाम है मुख्यतः एक सोसाइटी के लेवल पर कि लोग अफीम की खेती करके छोटे समय में, कम समय में ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ते हैं, तो उसका सामाजिक स्तर पे दुष्परिणाम तो दिखता ही है। साथ ही साथ अफीम की खेती से ये भी कहा जाता है कि जो भूमि है खेती योग्य, उसमें भी, उसकी उपजता में भी नुकसान होता है। तो जहां भी हमारे किसान भाई या हमारे गांव के लोग किसी भी दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर या किसी डर या भय से प्रेरित होकर या प्रलोभन से प्रेरित होकर अगर अफीम की खेती करते हैं, तो ना ही केवल उनकी जमीन बल्कि पूरे समाज पे और गांव के स्तर पे जो सामाजिक वातावरण है उसमें डेफिनेटली एक दुष्प्रभाव पड़ता है, जो उस गांव के लिए और पूरे समाज के लिए सही नहीं है।
2: मुझे तो लगता है कि जो खेती करने वाले हैं अफीम की, वो कहीं ना कहीं या तो उनके पास जानकारी का अभाव है, या फिर जानते हुए भी ये खेती कर रहे हैं अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए, या फिर कानून संबंधी भी जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए भी वो खेती कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं, इन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो आपने क्या पाया है?
1: इस बात को तो हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि जो आम जनता है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो गांव है, वहां के लोगों के बीच जो इसके कानूनी पक्ष है उसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए उसकी अभाव है। और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जो सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भय से या पैसे के प्रलोभन से लोग इसकी खेती करने को तैयार होते हैं। इसके विरोध में और ताकि अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया जाए और लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया जाए, इसको लेकर हम लोग अपने स्तर से भी, प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी लगातार गांवों में जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों के बीच जाकर उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस का माध्यम है, चौकीदार जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा गांव की कनेक्टिविटी के लिए और विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां जहां प्रभावित एरिया रहा है उसमें हम लोगों ने ग्राम के मुखिया एवं वार्ड मेंबर्स के साथ भी मीटिंग की है, उन लोगों को भी इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सारे श्रोताओं को भी, कि बीच में ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए हैं जहाँ पे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी देने के बाद लोगों ने स्वतः इस अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया है, जो अपने आप में एक स्वागतपूर्ण कदम है।
2: सर, अब बारी आती है कि जब हमने जान लिया कि कानूनन ये अपराध है अफीम की खेती करना, या ये भी हमने जान लिया आपके मार्फत कि इसके दुष्परिणाम भी काफी हैं, भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, और फिर हम कोई खेती उस पर नहीं कर सकते, इन सारी बातों की जानकारी जब हो जाती है तो अब सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाई बहन इस खेती को कर रहे हैं, अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं और आर्थिक आमदनी भी उनकी हो रही है, अगर उनसे ये चीजें छीन ली जाएं तो फिर उनका क्या हाल होता है? और आप इन समस्याओं को देख रहे हैं तो आप बखूबी ये बातें बता सकते हैं।
1: जहाँ तक अफीम की खेती की बात है तो जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रतिबंधित खेती है जिसका जिसकी खेती नॉर्मली एक किसान या कोई भी इंसान अपने खेतों में नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ तक जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, NDPS एक्ट, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है और लंबी अवधि की सजा उसमें दी जाती है। तो अगर आप इसको करते हुए पाए जाते हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप सजा के पात्र हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे कमा भी लेते हैं तो अगर आप पकड़े जाते हैं या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो आपको जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो आर्थिक फायदा लोगों को दिखता है इसी खेती में वो एक कोई भी बहुत ही ऐसा प्रेरणा स्रोत होगा जिसकी वजह से लोग खेती करेंगे। साथ ही मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि खेती के नहीं केवल खेती बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी गांव के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो इन सब का एक व्यापक जो ग्रामीण लाइफस्टाइल है उसमें असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से मैं फिर से आपके माध्यम से अपने जो किसान भाई बहन अफीम की खेती में लिप्त हैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि वो इसको त्याग दें और जो नॉर्मल खेती है, जो नॉर्मल उनके क्षेत्रों में फसल हो रही है उसकी खेती करें और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसका लाभ उठाएं और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन करें।
2: जी बिल्कुल सर। और एक बात और है कि हमारे झारखंड राज्य में जहां हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, तभी अब एक और समस्या खड़ी हो चुकी है और वो है अफीम की खेती। तो सर, हमारे झारखंड राज्य में और जहां तक आपके कार्याधिकार के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या स्थिति?
1: जहां तक मेरे कार्य क्षेत्र की बात है तो मुख्य रूप से जो चार थाना क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित हैं, विशेषकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, उन्हीं में अफीम की खेती का दुष्प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो नक्सल दस्ते थे उनका असर रहा है और लोगों को भय या प्रलोभन के द्वारा उनके द्वारा इसको अफीम की खेती को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे कार्यक्षेत्र में चार थाने हैं जहां पे इसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। उसके अलावा झारखंड राज्य में टोटल फिगर तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ, बट कुछ जिले बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफेक्टेड हैं और जहाँ पे अफीम की अवैध खेती की जा रही है।
2: सर, जब इस खेती को हम अवैध घोषित कर चुके हैं और लोगों में जिनमें जागरूकता नहीं है, मैं समझती हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमें जागरूकता अवश्य आएगी और लोग इस ओर सोचेंगे जरूर। सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, साक्षरता दर उनमें कम है और उनकी समझ भी ये नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में इस ओर इनका आ जाना, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो बहलावे फुसलावे में भी आकर इन सब चीजों में लग जाते हैं?
1: आपका ये कहना कुछ हद तक जायज है, बट इन्हीं चीजों से जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो हमारे गांव के भाई बहन रह रहे हैं और जो अफीम या इस तरह की अन्य खेती करने के लिए प्रभावित होकर खेती करते हैं, उनको हम लोग उनके बीच जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही जो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है गांव तक जो संबंधित गांव के मुखिया होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से भी थाना स्तर पे बराबर अंतराल पर मीटिंग करके उनको इस चीज की जागरूकता दी जाती है कि ये अवैध खेती है और आप अपने क्षेत्र में जाकर चौकीदार के माध्यम से एवं अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में निवास करते हैं या कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि ये अवैध खेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसमें संलिप्त हैं वो इसको इसका त्याग करें, इसका नष्टीकरण करें और इसके दुष्परिणामों को समझें और हम लोग रांची जिला में इसकी खेती के विनष्टीकरण एवं समाप्ति की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते आप एक और समस्या जो हमारे झारखंड राज्य की है और वो है नक्सलवाद की समस्या, मैं चाहूंगी कि इस विषय पर भी आप हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताएं कि मुख्य धारा से जुड़कर रहने के क्या फायदे हैं और अगर आप मुख्य धारा से भटक चुके हैं तो क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं।
1: जो लोग हमारे भाई बंधु, हमारे राज्य के भाई बंधु जो भटक कर नक्सलवाद और वामपंथी विचारधारा से जुड़कर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरा अनुरोध है कि अभी भी सरकार की जो नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, वो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें आपको मुख्य धारा में आपका हमेशा स्वागत है। जो भी मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं कि आप पुनः मुख्य धारा में लौटे। जो विचारधारा लेकर वो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और देश के हित में नहीं है और हम सब मिलकर देश के हित में कार्य करें, मेरी उन लोगों से गुजारिश रहेगी। साथ ही जो लोग वापस मुख्य धारा में जुड़ने आते हैं उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से दी जाती हैं, जिसमें अनुदान राशि के अलावा उनकी बीमा का खर्चा उठाया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनके आवासन का, तो साथ ही उनके जीवन यापन के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट की अगर ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो वो भी दी जाती है। तो जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है सरकार की, जो नीति है, वो बहुत ही आकर्षक है। और आपके कार्यक्रम से मैं पुनः जो भाई बंधु भटके हुए हैं मुख्यधारा से, उनको मैं पुनः मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं, और मैं उनका स्वागत करूंगा अगर वो लोग पुनः मुख्यधारा में जुड़ने को तैयार हैं।
2: तो आत्मसमर्पण नीति का लाभ वो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं अभी उनको मिल रही है, इस बारे में भी मैं आपके मार्फत उन तक संदेश पहुंचाना चाहूंगी।
1: जो मुख्य रूप से एक जो पहली फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो अनुदान राशि के रूप में है, जो 3 सालों तक मिलती है उनको। जो लोग सब जोनल कमांडर से ऊपर की रैंक में रहते हैं किसी भी नक्सलवादी संगठन में, उनके लिए वो अनुदान राशि 6 लाख रुपए है। और जो 10 सदस्य हैं और नीचे के लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं, उनके लिए 3 लाख की अनुदान राशि है, जो 3 सालों तक बराबर किस्तों में उनको दी जाती है। साथ ही जो लोग इंदिरा आवास के लिए एलिजिबल हैं, उनको इंदिरा आवास के मार्फत घर की और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अदरवाइज अगर 4 डिसमिल जमीन वो लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो उसके लिए इच्छुक हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है सरकार के द्वारा, ताकि वो आगे चलकर किसी एक एरिया में अपने आप को डेवलप कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, एवं उनके पूरे परिवार का बीमा भी कराया जाता है और बीमे की राशि भी सरकार के द्वारा पे की जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो आकर्षण के केंद्र हैं वर्तमान जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है उसमें। उसके अलावा जो उनके ऊपर केसेस होते हैं, जो कांड दर्ज रहते हैं, उन कांडों में भी जो सरकार के पक्ष की तरफ से उनको जो सहायता प्रदान की जा सकती है वो की जाती है।
2: सर, यहाँ पर एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। जहाँ तक इन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, इन लोगों ने बताया है कि जब हम मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, गांव और परिवार के बीच में पहुंचते हैं, तो वहाँ लोग सहर्ष हमें स्वीकार नहीं करते, और कई बार ऐसा होता है कि वे सोचते हैं कि शायद अगर ये हमसे जुड़कर रहेंगे तो इन पर कोई खतरा आ सकता है। तो भयमुक्त होने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहेंगे?
1: जो भी मुख्यधारा में वापस जुड़े हैं, उन लोगों को जहाँ भी जो भी सुविधा मुहैया कराने की बात होती है वो प्रशासन के द्वारा कराई जाती है। जहाँ भी जमीन देकर उनके आवासन की व्यवस्था हो, या उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, या उनके जीवन यापन में जो भी हेल्प सरकार के द्वारा नीति के आलोक में की जाती है वो कराई जा रही है। और अगर ऐसी नॉर्मली जो हम लोग के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि सुरक्षा मामले में उनको कहीं भी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी ऐसी बात आएगी तो आप लोकल प्रशासन से संपर्क करें। और मुझे लगता है कि हर जिला स्तर पे एवं जो भी पदाधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो बिल्कुल इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की किसी भी भय से परेशान होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उनको भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है।
2: सर, अंत में जो श्रोता अभी सुन रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से अगर वो भटक चुके हैं और इस ओर वो वापस आना चाहते हैं, अपनी ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
1: मैं पुनः आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और जो हमारे भाई बंधु नक्सलवाद की तरफ भटक कर चले गए हैं, उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य धारा में वापस लौटे। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है, उसमें जो लाभ और जो व्यवस्था उनके लिए दी गई है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन में पुनः वापस आएं और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने गाँव के साथ, अपने जीवन को खुशहाली के साथ जिए और इस देश की प्रगति में, देश के निर्माण में अपना जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सहयोग हो सकता है वो करें, ताकि गांव के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे हम उनके कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए उनको जाने, ना कि उनकी जो भटकी हुई विचारधारा है उनके लिए उनको पहचान किया जाए।
2: सर, अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए और इतने विस्तार से अफीम की खेती और नक्सलवाद, इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे गढ़वा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर। सर ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और जितनी भी बातें इन्होंने बताई, मैं समझती हूँ कि इससे हमें लाभ जरूर मिलेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे बातें कर रहे थे कि नशा मुक्त अभियान में जन जन की भागीदारी क्यों जरूरी है। इस विषय पर नशा मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस अभियान का भागीदार माने। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह स्वयं नशा नहीं करेगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी जागरूकता फैलाना, युवाओं को खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना, नशे के अवैध कारोबार की सूचना प्रशासन को देना, नशाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके पुनर्वास में सहयोग करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश फैलाना, विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना, यह महत्वपूर्ण कदम हमारे द्वारा उठाए जा सकते हैं। नशा किसी भी समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है। इससे व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों प्रभावित होते हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल कानूनों या सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक जन जागरण और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारा आज का आओ साथ चलें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

आओ साथ चलें। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे सूत्रधार थी सिंधु मिश्र और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पे आप सुनेंगे सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत पुष्प फिल्मी गाने।

शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार 5:02 पे युवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है पालतू पशुओं से प्रेम करें पर सावधानी से। विषय पर इतिहास में आज का दिन, भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में और कुछ रोचक तथ्य आपसे साझा किए जाएंगे। साथ में समसामयिक के विषय पर भी चर्चा होगी। आज सूत्रधार हैं आद्या शक्ति और खुशी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय विश्व पशुजन्य रोग दिवस, जानकारी और बचाव विषय पर। कुटीर उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर भी चर्चा होगी। जानकारी दी जाएगी आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर और बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल पर भी चर्चा होगी। आज सूत्रधार हैं योगेश्वर राम और महिमा गोल्डन बिलूंग। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

शाम के 6:02 पे खेती बाड़ी कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है झारखंड में मशरूम की खेती की संभावनाएं विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर अदित झा। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। हमारे दुनिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पे। आज चर्चा का विषय बेटा बेटी एक समान विषय पर। तत्परगण्य वार्ता सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज विषय पर वार्ताकार हैं पराग किशोर सिंह। शाम के 7:00 प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल 7:11 पे। आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:15 पे। आज का कार्यक्रम राम भाषा में है। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम रात्रि 8:30 पे।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे सुनहरी यादें कार्यक्रम। ये कार्यक्रम फिल्म संगीतों पर आधारित है। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे वायलिन पर राग श्याम कल्याण में प्रस्तुति। कलाकार हैं श्यामल बोस। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत आई सुनते हैं। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत है।

फिल्म एक दूजे के लिए का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म सीता और गीता का गीत

लखन सीता और गीता का गीते भी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। और श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म बम्बे का बाबू से। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

बम्बई का बाबू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत था सचिन देव बर्मन का। और श्रोताओं आइए आप सुनते हैं फिल्म अंदाज का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की रचना है और संगीत शंकर जयकिशन का।

अरे कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म गुलामी का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, रचना गुलजार की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम

0: शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खेल परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। लोहरदगा स्थित डायट चिरे में आज से पलाश बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। 9 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सीमा लकड़ा ने किया। प्रशिक्षण में जिले के 50 शिक्षक भाग ले रहे हैं। गुमला में भाजपा ने आज जिला अध्यक्ष सागर उरांव के नेतृत्व में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही पिछले पखवाड़े से चल रहे स्मृति दिवस कार्यक्रमों का समापन हुआ। साहिबगंज में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के तहत आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी को महान राष्ट्र नायक बताते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर ने आज परिसदन के समीप नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और आधुनिक जिम का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। उपायुक्त ने शेष कार्यों को समय पर पूरा करने और परिसर के नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर समय होगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आज कल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:00 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9 रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी के द्वारा स्वरबद्ध किए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म आदमी सड़क का। आवाज़ मोहम्मद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म द ट्रेन का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी को, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म नसीब का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म धरती का ये गीत। गीतकार राजेंद्र क्रिस और संगीतकार शंकर जयकिशन। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मक्का की खेती और देखभाल, आज हम इस विषय पर जानकारी देंगे, साथ ही आनंद लेंगे, होलो गीत का सुनवाएंगे, एक भेंटवार्ता और कुछ जरूरी संदेश भी सुनेंगे। मक्का की खेती देश भर में खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन तीनों ही मौसमों में की जाती है, लेकिन खरीफ में इसका सबसे अच्छा और ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का का उपयोग भोजन, चारा, औद्योगिक उत्पादों और मुर्गी दाने के रूप में होता है, जिससे इसकी बाजार मांग हमेशा बनी रहती है। यदि किसान भाई उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, समय पर सिंचाई और कीट प्रबंधन को अपनाएं, तो मक्का की खेती से उच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए फसल की अच्छे पैदावार के लिए गहरी, उपजाऊ और मध्यम बनावट वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी में इन फसलों की बुआई करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह फसल की वृद्धि और उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है। खरीफ के मौसम में इसकी बुआई मानसून शुरू होने से पहले 15 जुलाई तक कर सकते हैं, यानी कि मानसून शुरू होने से पहले से लेकर के 15 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त होता है। अधिकतम पौध संख्या और अच्छी उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बीज का प्रयोग करें। मेड़ व नाली पद्धति समतल बुआई की तुलना में अधिक लाभकारी होती है, क्योंकि इससे अंकुरण तेज और स्वस्थ होता है। मेड़ों को पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएं और बीजों को मेड़ की दक्षिण दिशा में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। समतल बुआई के लिए बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखें। लाइनों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधे के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद अतिरिक्त पौधों को निकाल दें, ताकि पौधों के बीच उचित दूरी बनी रहे। फूल आने और दाना भरने की अवस्था में सिंचाई अवश्य करें, ताकि उपज में वृद्धि हो। बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। मक्के के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का सही संतुलन जरूरी है। पहली बार यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय दें। शेष यूरिया को 2 भागों में एक बार पौधे घुटने तक बढ़ने पर और दूसरी बार फूल आने के समय डालें। फसल के शुरुआती 30 से 35 दिनों तक खेत को बिल्कुल साफ रखें। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब पौधे लगभग घुटने की ऊंचाई तक पहुंच जाएं, तब कतार के दोनों ओर की मिट्टी को पौधों की जड़ों के पास चढ़ा दें। इससे पौधे मजबूत रहते हैं और गिरते नहीं हैं।

0: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: किसान भाई बहनों, इस छोटे से विराम के बाद आनंद लेते हैं हो लोकगीत का, सिनी माई आल्डा और साथी के स्वरों में।

0: किसान भाई बहनों, आज कार्यक्रम में मौजूद है लेबिया सुंडी, जो कि रामपोसे गांव के निवासी है। ये आज हमें फूलगोभी और टमाटर की बागवानी किस तरह से करनी चाहिए उसके विषय में जानकारी देंगे। तो लेबिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
1: जोहार।
0: तो लेबिया जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फूलगोभी और टमाटर की जब बागवानी करते हैं तो उसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए।
1: जी, हम फूल गोभी लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं।
0: कौन सा मिट्टी?
1: कल्ला मिट्टी में।
0: अच्छा।
1: कल्ला मिट्टी में बहुत अच्छी तरह तैयार करते हैं।
0: मतलब काला मिट्टी में अच्छा तरह से फूलगोभी का खेती
1: होता है।
0: होता है।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो मिट्टी को तैयार

0: खाद का इस्तेमाल करते हैं गोबर खाद की सूखा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं?
1: शुरुआत में सूखा वाला गोबर खाद डालते हैं। अच्छा, पुराना वाला
0: जी। तो कितना दूरी में लगाते हैं?
1: 2 से 2.5 सेंटीमीटर में
0: दूरी होना चाहिए।
1: होना चाहिए जी,
0: क्योंकि टमाटर के जो और फूलगोभी के जो फूल हैं और टमाटर के जो पौधा है वो बहुत फैलते हैं।
1: जी हाँ, पालते हैं
0: जी। तो उसको दूरी पे इतना लगाना चाहिए कि जो आपस में मिल के सड़ना चाहे पौधा।
1: हाँ हाँ
0: जी
1: जी।
0: तो बीज का इस्तेमाल करते हैं या पौधे का इस्तेमाल करते हैं?
1: बीज का।
0: अच्छा, बीज कहाँ से लेके आते हैं?
1: बाजार से
0: जी। तो प्रति बीज के पैकेट का कितना दाम होता है?
1: 550 से 700 रुपया
0: दाम होता है।
1: दाम होता है 10 ग्राम का।
0: अच्छा, तो एक बीज के पैकेट में कितना मतलब कितना हो जाता है फसल?
1: 1500 या 1600 लगभग
0: एक पैकेट में। और उसमें से बहुत कुछ खराब भी निकलता
1: है। खराब भी निकलता है जी। हाँ
0: जी। तो फूलगोभी में कीट लगते हैं?
1: लगते हैं।
0: कौन सा कीट लगता है
1: उसमें? जब पौधा बढ़ते समय भी लगता है। और फूल निकलने
0: हाँ, जी, जी, हाँ,
1: उसी समय भी लगता है 2-3 बार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें लंबा टाइप का कीड़ा भी रहता है उसका अंत में। और फूल लगने के बाद वो निकलते समय मोटा मोटा वाला भी रहता है
0: फूलगोभी में।
1: फूलगोभी में
0: अच्छा,
1: दो किस्म का कीड़ा लगता है।
0: अच्छा, तो उस कीड़ा को मारने के लिए क्या करते हैं?
1: वो दवा छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, कौन सा दवा?
1: शुरुआत में तो वही मैंने करंट ही छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा,
1: और फूल निकलते समय वो कार्बिन छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
1: वो मैंने मशीन
0: दवा है कि पाउडर है जो दवा का नाम?
1: दवा का नाम करंट भी इतना बड़ा सीसी में रहता है।
0: अच्छा,
1: वो तेल तेल जैसा रहता है।
0: तो वो
1: बहुत जल्दी वो करंट से बहुत जल्दी कीड़ा मार जाता है।
0: अच्छा, तो वो तेल को पानी में मिला के छींटते हैं या फिर ऐसे?
1: एक टीना पानी में 2 टीपी जो बोलते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: 2 टीपी डालते हैं, उसके बाद छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, पूरा फसल में?
1: फसल में।
0: अच्छा, तो वो कीट तुरंत ही मर जाते हैं?
1: हाँ, 5 मिनट अंदर में।
0: अच्छा, खरपतवार कैसे नियंत्रण करते हैं?
1: वो घास जब पौधा होने के पहले भी सफाई करते हैं और बाद में भी 3-4 बार साफ करते हैं, घास को बाहर
0: फेंक
1: देते हैं।
0: अभी तो बरसात का मौसम है
1: जी,
0: तो अभी तो ज्यादा घास फूस हो रहे हैं,
1: जी
0: जी। तो समय समय पर उसका घास फूस का
1: सफाई करते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: जी। तो टमाटर और गोभी मतलब किस मौसम में लगाना चाहिए?
1: इस समय तो यहाँ का जगह हिसाब से हम लोग फूल को भी अभी सितंबर महीना में बीजा डालते हैं।
0: अच्छा,
1: और 3.5 महीना में तैयार हो जाता है
0: फूल गोभी
1: जी।
0: अच्छा,
1: तो 1 अक्टूबर में जो रोपते हैं।
0: अच्छा, अक्टूबर में
1: जी। हाँ,
0: ये अगस्त सितंबर 2 महीने के
1: बाद। हाँ।
0: अच्छा, तो फूलगोभी का कौन सा प्रजाति लगाए हैं आप?
1: माधुरी लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: बहुत तो अच्छा फूल होता है
0: ये माधुरी किस्म में।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो फूलगोभी कितना दिन में बन के तैयार हो जाता है?
1: 3 से 3.5 महीना में।
0: अच्छा, और इसकी तुड़ाई कब करते हैं?
1: वो जनवरी में करते हैं।
0: जनवरी में
1: जी,
0: जी 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है तो जनवरी में तुड़ाई करते हैं ना
1: जी।
0: और टमाटर किस तरह की मिट्टी में लगाते हैं?
1: हल्का लाल और काला है उसमें भी,
0: और मतलब दोनों मिक्स मिट्टी
1: मिला हुआ है।
0: अच्छा, मिक्स मिट्टी में लगा सकते हैं। अच्छा, और टमाटर को मतलब पौधा लगाते हैं या उसका भी बीज लगाते हैं?
1: बीज पहले लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: उसके बाद
0: कौन सा किस्म लगाए हुए हैं टमाटर का?
1: अभी 15 अगस्त के बाद वो बीज डालते हैं।
0: अच्छा,

0: बाद महीना भर के बाद लगाते हैं पौधा।
1: अच्छा, तो कौन सा किस्म का लगाए हैं?
0: संकर बीज लगाते हैं।
1: अच्छा, तो इसमें टमाटर संकर बीज का टमाटर अच्छा होता है?
0: बहुत अच्छा होता है
1: जी।
0: मैंने एक पौधा में 2 से 3 किलो तक फल होता है,
1: टमाटर मिल जाता
0: जी।
1: है जी। और टमाटर से टमाटर का जो पौधा है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए?
0: उसका दूरी चौड़ाई, टमाटर रोपने का चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि बहुत पौधा
1: पूरा फैल के
0: होता है
1: जी जी जी जी। और पानी कब कब डालते हैं? क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या नहीं?
0: अभी तो सितंबर अक्टूबर में तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और मैंने सूखने के बाद कभी कभी देते हैं,
1: पानी देते हैं सुबह शाम?
0: नहीं, मशीन से करते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: मशीन लगाए हुए हैं
0: जी? हाँ।
1: तो ये खरीदे हुए कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं?
0: होंडा मशीन, किरासन वाला।
1: अच्छा जी, तो वो नदी से डायरेक्ट?
0: हाँ, पाइप जी
1: जी जी। तो उसी से पूरा पाइप, मतलब पाइप लगा हुआ है?
0: लगा हुआ है
1: जी। और टमाटर में कौन सा कीड़ा लगता है?
0: वो इतना मोटा मोटा रहता है।
1: अच्छा,
0: को फल पूरा खराब कर देता है।
1: अच्छा, तो उसको मारने के लिए कौन सा दवा का इस्तेमाल करते हैं?
0: हम टमाटर में 3 से 4 बार कीड़ा का दवा लगाते हैं।
1: अच्छा, कौन सा दवा?
0: शुरुआत में तो वही ग्रेंट लगाते हैं।
1: ओ, वही?
0: हाँ
1: जी।
0: और सेकेंड, तीसरा, चौथा बार में तो कार्बिन।
1: अच्छा
0: जी,
1: वही जो फूलगोभी में इस्तेमाल करते हैं?
0: जी हाँ, वही।
1: अच्छा, और घर के लिए बागवानी करते हैं या फिर इसको बेचने के लिए?
0: बेचने के लिए।
1: अच्छा, कैसे ले जाते हैं?
0: साइकिल में ही ले जाते हैं, अगल बगल में डेली मार्केट होता है।
1: अच्छा,
0: वहीं बेचने के लिए ले जाते हैं
1: जी। तो टमाटर जो संकर बीज है सिर्फ इसी महीने में लगा सकते हैं या फिर 12 महीने?
0: 12 महीना
1: लगा सकते
0: जी।
1: हाँ। यानी कि टमाटर की खेती हम 12 महीना कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई हानि नहीं?
0: हानि नहीं है जी
1: जी। और कितना मुनाफा हो जाता है इससे आपको?
0: प्रति एकड़ में टमाटर का मुनाफा 15-20 हज़ार रुपया।
1: अच्छा
0: जी। हाँ।
1: मिल जाता है?
0: मिल जाता
1: से
0: है
1: जी। तो ये टमाटर कब तक, कितने महीनों में पककर तैयार हो जाते हैं?
0: 90 दिन में।
1: 90 दिन में
0: जी
1: जी। लेबिया जी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो पौधों को और फसल को किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप?
0: पौधा को बचाने के लिए नाली बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: नाली बनाते हैं, उसी नाली से पानी जाता है।
1: ज़्यादा पानी जमाने
0: नहीं होना, और जितना ज़रूरत उसी हिसाब से पानी
1: पौधों को मिल जाता है।
0: मिल जाता है जी
1: जी, जी। तो आपने आज हमें फूलगोभी और टमाटर की बागवानी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी ले रहे थे फूलगोभी और टमाटर की खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे लेबिया सुंडी। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत मालावती देवी और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के वैध कारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। पलामू स्थित चैनपुर के रामपुर गोलीकांड में सिकंदर चौधरी की हत्या के खिलाफ आज समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच और बाकी आरोपियों के अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। सरायकेला के सिद्धू कानू पार्क में आज से झारखंड आंदोलनकारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। आंदोलनकारी पिछले 7 महीनों से लंबित सम्मान राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: aimutan taikna bu her ori aduren hamtu o burusairen kalakar ko paite ela arpa bu ayumia mi bepata jagar konre marang parichariya tayari chilkibu tayariye nen biserkin japagartanakin bepata jagar re amirta alda undo jagannath hisalote ela marbu ayumkin
1: akar inten sanam hagando misiko elate sing enkan kupuloli bepeta kana ente akinte etege jokalka onorumbu asekin marjuar ge
2: juar
1: mar abena onorum ko haga kulang jagara ko
2: juar sanam haga mis halin pete talin alutum do amirtal da atu do ganji parkan do tatna bar parkan ta para jela do patmis
1: abena ol padao do chiminjam hoba kana
2: halin ya ol padao do ne pije jokani kan
1: kon bisera
2: economics semester
1: ek to tayari bisay to
2: tayari bisay ko dane abu state lu bar ya gpsc cgl ko na ko lin tayari tene do other state ya ko lin tayari kida
1: acha
2: eske up pcs ko mani ya ane te bihar ya te ye upsc
1: mane upsc da bu desh level re matlab bharat varsh me ek to marang
2: civil service ko mani
1: ya nanti jadi abang nak berani jaga tentang ini nanti UPSC ni ada yang tayar kena ya Uttar Pradesh Public Service Commission ya Bihar Public Service Commission ni nak ko? Indo mana yang mana abu desa ni ya Bharat ni ya UPSC. Dan ini ada tayari abang cuci-cuci kita abang tayari kita.
2: Aling tayari tu ini teh hubaya na. Tapi GPSC abu Jharkhand ni ya 2015 ni qualifying lah tayar kena PT. PT keling clear ke bawah re mains re registration semua re. Aling so last teh. ये मैसेज हो जो इना लिंते
1: अच्छा माने पीटी बिन क्वालिफाइड दा
2: ए पीटी दोलिन क्वालिफाई ने दा मैस रजिस्ट्रेशन लगे न मैसेज हो जो इने एन दो टीसिंग लास्ट लिकारे आलिने तेरे मैसेज हो जो इने एन सुमा आलिने तेरे बटन सिस्टम मोबाइल टाइप
1: अच्छा
2: एन दो इमिन आदा को कल यादा हम टाइप ने ऑल लिकारे
1: एन रोबिन पास के
2: एन रोबिन पास के नाम दिया
1: एन दो यूपीएससी तैयारी लगे दो कोन ताते माने मोटिवेशन बिन नाम कडा या फिर चिलकेते बिन उड़ नाम कडा यूपीएससी नि तैयारी मिलती है
2: नन जब GPSC PT-ling pass ke dah, uskup bahaya talinya sotre, ni nak ujui nanti. UPSC level ni, tayari ni, thik ye.
1: Do, jadi UPSC ni tayari tu, esok gunung ni tayari tu, do, chill kete mana ni, abang ni betak raci, alingi naling tayari dahye, do, puasa mending kerja dahye.
2: Aling tayari mending confidence dahye, ni, pada ulagen.
1: Yeah.
2: Alingi naling pass dahye, menti. Aling all dah, all dah, 1-2 number ni, aling kamy.
1: Acha. Mana UPSC ni, 1-2 number ni, kamy. Jangan kaji bano, lekin men do enrobin tayari kena UPSC ria tayari min asan do bano, okun IAS ya fir
2: IPS
1: IPS kubu bayu wa, min asan bano. To nina lagi te aben jo syllabus jo mina amne, ya to na jo abu tayari ten kumen tiya kaji, jajar kan do tayari tena, cahe SSC ria abu tayari tena, jangan nokri ria abu tayari tena. Do ne ko cilik lan jaga rak paci cilik tayari tiya dor kara. Cina cie aben UPSC tak ria aben tayari kena. Cilik tayari tiada dorkara.
2: Ya, nado jarkan astar ya, lan jagar liya. Jarkan astar jo silibus mina, lan silibus to pura tayari tiada dorkara. Eni sabte, matlab ki na jarkan ria silibus lel ketega tayari do tayari tiya. Jadi seperti GPS ria alak fitan mina. Do CGR ria alak fitan. Eni sabte silibus do tayari tega ba. Eni tebuk ko hujue, ina pura मतलब की तैयारी थी
1: यूपीएससी लगन अबन जैसे जेपीएससी रबन जगर के था जेपीएससी रो तो बन कोचिंग किना छी अबन ते के बन पढाओ ना
2: जे यूपीएससी रो तो लिंग कोचिंग किना दृष्टि आईएएस रे
1: लो जेपीएससी लगे तो
2: जेपीएससी रो तो आलिंग ते के लिए सेल्फ स्टडी
1: अच्छा सेल्फ
2: स्टडी यस सेल्फ स्टडी
1: तो जैसे ना मरंग संस्थान ओकना कोचिंग संस्थान बु मने दृष्टि
2: या दृष्टि आईएएस
1: तो नेन रे सबसे पहले चिना को समझाओ बु मतलब जब अब कोचिंग बु से नवा
2: नन दृष्टि आईएएस रम सना तो सबसे पहले आते डेमो को हमिया
1: अच्छा
2: डेमो को हमिया क्लास रिया मतलब कि सिलेबस पे टांड को समझाओ या हम मतलब कि सब्जेक्ट वाइज रिया जैसे कि हम अलग-अलग सब्जेक्ट है तो हम तैयारी दिए जैसे कि हम भूगोल हुआ पॉलिटिकल हुआ हिंदी हुआ ते ना हिस्ट्री हुआ मेंते इतिहास इन सब्जेक्ट तुम तैयारी दिए हम चूज से छे हम कौन सब्जेक्ट रे कंफर्टेबल में नाम है तो इन सब्जेक्ट चूज करते नि सबते पैकेज है में है इन द पैकेज हु जो ये इन द मतलब कि जीएसपी पर फर्स्ट टाइम एंड सी सेट को मैंने ती पेपर टू रे टाइम है एंड द क्वालिफाइंग पेपर दो सी सेट टाइम पासिंग ईयर दो सम पास है या दो ᱡᱤᱭᱮᱥ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ
1: ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱮᱱ ᱤᱭᱩᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱮᱴᱮᱱᱰ ᱛᱟᱨᱟᱢ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱮᱴᱮᱱᱰ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮᱭᱟ
2: ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱮᱠ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱞᱤᱧ
1: ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱵᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱚᱞ ᱛᱟᱨᱟ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱤᱭᱩᱯᱤᱯᱤᱥᱤᱮᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱹᱧᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ
1: ᱨᱮᱭᱟᱜ
2: ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱤᱥᱤᱮᱥ ᱫᱚ ᱯᱤᱴᱤ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱥ ᱠᱟᱞᱤᱧ ᱫᱟᱹᱭ
1: ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱪᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱱ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱤᱭᱩᱯᱤᱥᱤ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱛᱤᱱᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱤᱨ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱳᱰ ᱫᱚ ᱠᱟᱴᱚ ᱮᱱᱟ
2: ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱴᱟᱭᱠᱮᱱ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱟᱭᱠᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱭᱩᱯᱤᱯᱤᱥᱤ ᱥᱚᱧᱡᱮ ᱚᱞ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱤᱥᱤᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱟᱭᱠᱮᱱ ᱮᱛᱤᱧ ᱚᱞ ᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱤ 2022 ᱨᱮ ᱧᱚᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱤᱥᱤᱥ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱠᱚᱞᱤᱯᱷᱟᱭ ᱞᱮᱫᱟ
1: ᱛᱚ ᱥᱟᱨᱤᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱯᱮᱞᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱪᱤᱢᱱᱤᱝ ᱮᱠ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱢᱩᱞ ᱵᱤᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱟᱭ ᱚᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱮᱠᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱛᱮᱭᱤ
2: जब भी ना कंपटीशन तैयारी तेन को काजी मस्कल को अगर तैयारी तेन दबो मन लगाओ के तबो तैयारी है चाहे एक घंटा वो पढ़ा चाहे दो घंटा वो पढ़ा लेकिन हम अकोन सब्जेक्ट रिया मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहते बहुत जरूरी है जैसे कि ना जीएस पेपर दो सब इन सब्जेक्ट वो जो है मतलब कि साइंस हुआ एंड इंटरनेशनल वाला करंट इन आउट है हुआ तो न्यूज पेपर को लेवा तो बहुत जरूरी है हिंदी वाला या तो इंग्लिश वाला दोनों में मिल जाए पेपर न्यूज पेपर एंड एनी सब्जेक्ट मतलब कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टाइप हुआ और जीएस पेपर दो आम हिस्ट्री भूगोल को दो टाइम है पॉलिटिकल को दो टाइम है एंड अ कॉन्सेप्ट हां सब इन तैयारी तो हुआ हुआ एंड ते ना यूपीएससी में तैयारी रे दो 7 8 9 10 12 तक रिया एनसीईआरटी बुक एंड अ कॉन्सेप्ट तैयारी थी
1: माने 12 12 क्लास जों रे जो ये मेना पूरे
2: एनसीईआरटी बुक है ना पूरे कांसेप्ट में तैयारी थी या इना पूरे पैटर्न हम ये पढ़ा चबा तब उसके बाद एमसीयू एमसीक्यू बुक हो जावे मैंने तुम तैयारी दी है
1: अबन दो बन आंधी के नीचे
2: अले अले ने आंधी के ने
1: चले रे
2: अले ने आंधी ने 2010 रे
1: अबन वारन किन जाकिन मना बना छी ना उन्हें मिनन पढ़ाओ तना मनते
2: अले दो अले ने वारनी लुतुम तो जय प्रकाश बोलले एस पूरे ते सपोर्ट ता ले पढ़ाओ लागे तो काम ना ले
1: जैसे ना ᱵᱮᱱ ᱚᱣᱟᱨᱮ ᱟᱯᱟᱭᱴᱤᱠ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱜᱮᱛᱨᱟ ᱱᱟ ᱱᱤᱢᱱᱤᱱ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧ
2: अगर अमार जुनून में ना एन दो मतलब के पढ़ाओ रे ध्यान में तेसो दूर करा छे इंगा पको मतलब के सभी को तो काबू नलन करे तेने जे केते बारी के तरह को पढ़ाओ छे तबु एन दो पढ़ाओ रे ध्यान तिया दो अगर मान लिए पु तैयारी तेने एन दो तैयारी रे पूरे पुका समय या मतलब के हम नौकरी एन रे सब एकदम जगर दई हम काटा सुबह हो जो दई
1: अब दो ना दो इनकम ना अच्छी कॉलेज समय तक माने एन रे माहौल
2: मान ली कॉम्पिटिशन तैयार वो तैयारी थे ना तो सिलेबस आरते पूरे पढ़ाओ कहते ले लेती है जिमिन मरांग सिलेबस नहीं रमीना अन्य इन्हीं से अपने तैयारी के उनको ना सिलेबस ले कहते हम मतलब के आर पार ही हम पढ़ाओ दाई है उसके मतलब के हम टाइम पढ़ाओ रहे मैं त्याग सुधर कर एक घंटा दो घंटा जो भी हो हम टाइम चिल के बना में इनकम तैयार दे। मेन बात है कि मतलब कि सिलेबस सुन जानते हैं सुदूर करा मतलब कि निपातर पाए अंदर सिलेबस से काम कंप्लीट थे एंड तो मतलब कि चिल के मैंने नंबर हो जाते हैं का हो जाते हैं
1: हां इस एंड ऑफ मैंने माने मरंग पर से तैयार लगे थे मंडी जम को बंद है तब को सारी के
2: मंडी जम तो टाइम है मते मा बहुत कम नाम हुआ मरंग पर से जैसे कि नाम तैयारी थे तो अब मतलब कि यूपी स्पीशियस को इतने दो अब झारखंड का सिलेबस सबसे स्टेट है तो ये मतलब कि ना बिहार या सिलेबस में ना अच्छा इना दो सिर्फ कम गया अब दिन तो अद केड़े पूरे मनते इतिहास भूगोल रिया को ऐसे पूरे एन तार में उदय ये रिया को मन पढ़ाए तो वावा सिलेबस मरंग में झारखंड रिया जैसे कि जिस जीपीएस लेवल हम तैयारी थे उसके बाद फिर अब ये ना नेते हो बसाओ ना दो तक दसो मान्यता में ना या इन रिया मतलब कि सिलेबस दे मिन जके दखाई ना लगा दा इना मरंग गया
1: तरीका जी ते चलो ऐसे पूरे बीतीम अबन ची निमिन बड़ी मैंने ऑल प्रावधान को लगे थे ऐसे बिन जानकारी बिन इमा ले ते असरा वर्ष में तैयारी तीन को निन काजी को समझाओ जगर को समझाओ अंदो इन से ते को मरंग मरंग परिचय को मन को तैयारी को अंदो बुगिन हो रहते को सेस ते मर निमिन बुगिन जानकारी लगे ते अबन ऐसे पूरे बीतीम अंदो जुआर गे
0: आई मतन ताइक ना बो मरंग मरंग परिचय को चिलके बो तैयारी ये पब्लिक सर्विस कमीशन ची जे पी सी लिखन परिचय को चिल के बो तैयारी चिल के सिलेबस पूछ के लिए नैन विषय किन जप करतन तकना अमृता अल्डा अंडो जगन्नाथ है साल होते इला अर्पा मिया जानकारी ची संदेश पु अयोमिया ओकन रे अब मिशन वात्सल्य योजना ओकन योजना नैन योजना अब जिला रेन को अलग ते पश्चिमी सिंहभूम रेन को अलग ते अबेन इंगा अपो बाइन ते जुदि सनांग मेना एन दो अबेन इंगा अपो बेन बाइ दे युवा अब ए समाज तलमल रे इनकन हनको मिना को एसोलाले ओकन को इंग अपु काकोलेल दे कोतना जति अबना रासा मिना आ इनकन हनको लेल कोती आ एनरे दो अबेन जरूर तबे नेल दे को इना लगे ते सरकारी नियम लोते प्रागे केंद्र अंडो थाना ते प्रमाण सकम बाइके ते अबेन एन हनको रिके दे को अबेन एन हनको रिके दे कोती आ ची मापदन को दो नेलका मिना आ ची एन हन को 18 वर्ष जोंगे में रिकेते इकुवा ओंडो ओ ओकोन एंगा अपोकिन नेको रिकेते अकिन सनांग तना एन एंगा अपोकिन होमो लिकाते बुगिन स्वस्थ किन तयोतिया दरकरा ओंडो ओ अकिन 12 रे 115 उमर तयन तिया दरकरा काजिलेर दो मेंडो रे 35 वर्ष लगभग चिनाची एन सुमाय राकिन बुगी होमो पकड़ोवा कनुआ पे अकनुआ एन सुमाय राकिन हन को किन नेल दैकुवा इन लोते अब सरकार पाते हो निना जो दिबु लेलकुआ इन सरकार पाते हो 4000 टका देंगा नाम चांडू रे इन लेका अब मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत अब हनको बुरके दई को नेल दई को अब अपना समाज रे हनको अपना हतुरेन हनको बुगी लिकाते दुलर तब रिके दई को इला आरपा नेन जगर लोगे आरपा मी दुरंत पर सकेले नवा दुरंत नकी नानिका देवगा मंडो अकिने जुड़ी को

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले आप सभी युवा दोस्तों को रेखा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना। बरसात के मौसम में अपना विशेष ख्याल रख रहे होंगे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और बीमार होने से बचाव भी कर रहे होंगे। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम आपसे बातें करेंगे मिशन वात्सल्य योजना पर। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें हम कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख में रखते हैं और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल योजना क्या है। यह योजना गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थाई व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिशन वात्सल्य योजना पर ये जानकारी थी और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: नाम है रनबला देवी, गाँव बारी हतो घर आई ने हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अपन बात हो जा है।
6: नितुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा का
7: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन नितुम दो कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन नितुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ीड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंग हो इन्हें बुको को काको नहीं मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे आ जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: मिस सीमा
10: जी,
9: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
10: क्यों, लेकिन मैं
9: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
10: डिजिटल अरेस्ट?
9: 1 लाख दो, बन जाओगे।
10: इतने पैसे?
9: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
10: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
11: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन संदेशों के बाद दोस्तों कार्यक्रम युवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है हिंदी के कालजयी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। वार्ताकार हैं देवानंद तिवारी।
11: डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक थे। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता थे। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कर्तव्य के कारण वे विशेष यश के भागी हुए। उनका व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक था, जिसकी छाप उनकी प्रत्येक रचना में देखी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू प्रारिण ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके प्रपितामह ने काशी में कई वर्षों तक रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था। द्विवेदी जी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, और माता ज्योतिषमती प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक द्विवेदी को संस्कृत के अध्ययन का संस्कार विरासत में ही मिल गया था। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उसी वर्ष वे प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में हिंदी भवन के डायरेक्टर के पद पर काम करते रहे। शांति निकेतन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में आस्था की प्रतिष्ठा हुई। वह उनके भावी विकास में सहायक बनी। शांति निकेतन में द्विवेदी जी को अध्ययन चिंतन का निर्वाध अवकाश मिला। वास्तव में वे वहाँ के शांत और अध्ययनपूर्ण वातावरण में ही द्विवेदी जी के आस्था, विश्वास, जीवन दर्शन आदि का निर्माण हुआ, जो उनके साहित्य में सर्वत्र प्रतिफलित हुआ है। आचार्य क्षिति मोहन सिंह, विधु शेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी की निकटता से भी उनकी साहित्यिक गतिविधियों में अधिक सक्रियता आई। सन 1950 ईस्वी में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर होकर वहां चले गए।

मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक थे, फिर भी साहित्य को एक अविच्छिन्न विकास परंपरा में देखने पर बल देकर द्विवेदी जी ने हिंदी समीक्षा को नई दिशा दी। साहित्य के इस नैरंतर्य का विशेष ध्यान रखते हुए भी वे लोक चेतना को कभी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। वे मनुष्य की श्रेष्ठता के विश्वासी थे और उच्च कोटि के साहित्य में इनकी प्रतिष्ठा को अनिवार्य मानते थे। संस्कार जन्य क्षुद्र सीमाओं में बंध कर साहित्य ऊंचा नहीं हो सकता, अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उसे मनुष्य की विराट एकता और जिज्ञासा को आयत्त करना होगा। द्विवेदी जी ने चाहे काल विशेष के संबंध में लिखा हो, चाहे कवि विशेष के संबंध में, उन्होंने अपनी आलोचनाओं में यह बराबर ध्यान रखा कि आलोच्य युग या कवि ने किन श्रेयस्कर मानवीय मूल्यों की सृष्टि की है। कोई चाहे तो उन्हें मूल्यान्वेषी आलोचक कह सकता है, पर वे आप्त मूल्यों की अधिकता में विश्वास नहीं करते। उनकी दृष्टि में मूल्य बराबर विकसनशील होता है, उसमें पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती चिंतन का मिश्रण होता है। संस्कृत अपभ्रंश आदि के गंभीर अध्येता होने के कारण वे साहित्य की शुद्ध परंपरा का पालन करते हुए विकासशील मूल्यों का सहज ही आकलन कर लेते थे। हिंदी साहित्य की भूमिका उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है, जिसमें साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा तथा उसमें प्रतिफलित क्रिया प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा गया है। नवीन दिशा निर्देश की दृष्टि से इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व है। अपने फक्कड़ व्यक्तित्व, घर फूंक मस्ती और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण कबीर ने उन्हें विशेष आकृष्ट किया। हिंदी साहित्य का आदिकाल में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनः परीक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, जो आलोचनात्मक उतनी नहीं जितनी भावात्मक। द्विवेदी जी के निबंध हिंदी निबंध साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि है। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में विद्वत्ता और सरसता का, पांडित्य और गंभीरता और विनोदमयता का, प्राचीनता और नवीनता का जो अद्भुत संयोग मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अपने निबंधों में वे बहुत ही सहज ढंग से अनौपचारिक रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कूटज आदि की चर्चा करते हैं। उनके निबंधों का पूर्ण रसास्वादन करने के लिए जगह जगह बिखरे हुए सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों को जानना बहुत आवश्यक है। इन संदर्भों में उनकी ऐतिहासिक चेतना को देखा जा सकता है। उनमें अतीत के मूल्यों के प्रति सहज महत्व है, किंतु नवीन के प्रति कम उत्साह नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी का अपने ढंग का असामान्तर उपन्यास है, जो अपने कथा शैली के कारण सहृदय द्वारा विशेष रूप से समादृत हुआ है। यह हिंदी उपन्यास साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है। इसके माध्यम से अपने जीवन दर्शन के विविध पक्षों को उद्घाटित करते हुए उन्होंने इसे वैचारिक दृष्टि से भी विशिष्ट ऊंचाई प्रदान की है। हर्षकालीन जिस विशाल फलक पर बाणभट्ट को चित्रित किया गया है, वह गहन अध्ययन तथा गत्यात्मक ऐतिहासिक चेतना की अपेक्षा रखता है। कहना न होगा कि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में इस ऐतिहासिक चेतना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि वह समाज और संस्कृति के विविध आयामों को, उसके संपूर्ण परिवेश को एक आयविक इकाई में सफलतापूर्वक बांधने में समर्थ हो सके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सभी रचनाओं में इनकी भाषा बहुत ही सरल और मनमोहक है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ने से काफी आनंद और उत्साह मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत, बंगला और उर्दू भाषा तथा

0: इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे हैं। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। उनकी भाषा तत्संप्रधान साहित्यिक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रदर्शन को कहीं भी स्थान नहीं दिया। उनका निबंध साहित्य हिंदी में ही नहीं अपितु समस्त साहित्य में अपूर्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, समाज का यथार्थ चित्रण, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, प्राचीन और नवीन का समन्वय, ईश्वर में आस्था और मानवतावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। वे एक मानवतावादी आलोचक थे। वे मनुष्य की समस्त सामाजिक उपलब्धियों को साहित्य की सामग्री मानते थे, किंतु वे साहित्य के मूल तत्वों के साथ उसका वैज्ञानिक संबंध जोड़ते हैं। वे आदर्शवादियों या उपयोगितावादियों की तरह ऊपर से आरोपित नहीं करते। आचार्य द्विवेदी मानव मात्र को जोड़ने वाली साहित्य की आराधना को श्रेयस्कर मानते थे। विश्व साहित्य को बृहत्तर मानवीय चेतना का अंकुरण मानते थे। अनाम दास का पोथा में भी नव मानवतावाद के रूप में उनका यह स्पष्ट रूप प्रकट हुआ है। विश्व चेतना के प्रति सहानुभूति तथा मानव सेवा, द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में जिस धर्म दर्शन साधना को अपनाया है वह मनुष्य के सामाजिक जीवन में साधक है, क्योंकि मनुष्य का कोई भी धर्म दर्शन, भक्ति या साधना यदि मनुष्य के सहज सामाजिक जीवन प्रवाह अथवा मनुष्यता की वृद्धि में सहायक होती है तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, वाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार और वितर्क, पृथ्वीराज रासो, कालिदास की लालित्य योजना जैसे महान ग्रंथों की रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि द्विवेदी जी मानवतावाद के शक्तिशाली समर्थक थे। वे मानवता के सच्चे पुजारी थे। उनका साहित्य किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो करके समष्टि के लिए था। वे अपने में सभी को समेट लेते हैं। निस्संदेह मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण द्विवेदी जी को मानवतावादी साहित्यिक चिंतन के रूप में स्थापित करती है। सर्जन की सरसता, चिंतन की प्रखरता एवं मानवतावादी जीवन की दृष्टि की उदारता आदि के द्वारा साहित्य की पुष्टि करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में माना जाएगा। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता हिंदी के कालजयी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। वार्ताकार थे देवानंद तिवारी। और इसी वार्ता के साथ ही दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों और बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त रेखा को दीजिए विदा। लेकिन हाँ, जाने से पहले हम आपको बता दें, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजें। तो खत लिखने के लिए लिखिए हमारा पता, कार्यक्रम युवाणी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा। हमारा पिन कोड है 833201। तो अब अपनी दोस्त रेखा को दीजिए विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंप्स प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुड़े 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक नए रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
2: इस मुख्य समारोह में झारखंड के सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों से लैंप्स प्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव इन्हीं बच्चों पर टिकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। परिसर के रख रखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं राइफल से निशाना साधा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पतरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताया।
4: सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की, पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने काफी गंभीरता से इस विषय को ली है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली।
2: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने परिणाम को रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
5: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। बड़ा खतरा है। जेपीएससी एग्जामिनेशन क्रिमिनल ऑफेंस में छात्रों के साथ जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
2: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और लंबित मुआवजे का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद रैयतों को वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोडरमा के डोमचांच में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास पर गहरी चिंता व्यक्त की।
6: प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है, इतना तो झारखंड के लिए भला है ना झारखंड के लोगों के लिए भला है। जन विरोधी सरकार है और हम लोग तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं होता।
2: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के बैधकारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक इन विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
7: रिम्स 2 की बात ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक को यथावत रखे और आगे जब पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे, छानबीन करेंगे।
2: बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। हाल ही में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा जनप्रतिनिधियों को मिली कथित धमकी के सवाल पर आईजी ने कहा कि उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है।
8: इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में और जो मैटर रिलेटेड था उसके संदर्भ में हमने एसएसपी साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी लेनी थी, इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक सहित हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है, चाहे उनकी सुरक्षा लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो।
2: मौसम। राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। आज विशेष रूप से हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि रांची और गुमला सहित कई मध्य जिलों में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है। सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 438 बाल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न। नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंप्स प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर

0: सीबीआई जांच की मांग, मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुटे 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किट बैग।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में आजादी के बाद स्थापित हुई पहली औद्योगिक इकाई के बंद होने की घोषणा के बाद स्थानीय लोग आंदोलित हैं। यहां झीकपानी स्थित एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री, जिसे अडानी ग्रुप ने हाल ही में अधिग्रहित किया है, उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इस बात को लेकर स्थानीय मजदूर और पोषक क्षेत्र के ग्रामीण रोजी रोजगार को लेकर चिंतित हैं। जिला प्रशासन एवं राज्य व केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर प्रदर्शन और पदयात्राएं भी स्थानीय लोगों ने निकाली और लोगों को अभी भी यह उम्मीद है कि एसीसी अडानी की यह देश की सबसे पुरानी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी।
2: सबका यही विचार है, दोबारा से प्लांट सुचारू रूप से चले और खदान भी बढ़िया से चले। सारे लोग का यही विचार है, वहाँ फिर से लोगों का जीवन यापन का जो साधन है सुचारू रूप से हो, और सारे लोग जमीन देने के लिए तैयार है और सब कोई एक मंच में आज इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को यही मैसेज देने के लिए आए हैं। कंपनी को सहयोग करना होगा तो उस कंपनी को सहयोग करेंगे।
1: जिले में बरसात के आरंभ होते ही मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया जांच से लेकर उसके उपचार की सारी व्यवस्थाएं सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की गई हैं। जल जमाव वाले इलाकों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए नगर परिषद इलाकों और ग्रामीण इलाकों में कर्मियों को लगाया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि साफ सफाई रखने से मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए लोगों से मलेरिया से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं।
3: मलेरिया का प्रसार का अभी सीजन है। गांव में सभी अस्पताल में प्रायः देखा जा रहा है कि मलेरिया से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सभी से मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि जब भी आप सोएं रात में मच्छरदानी लगा के सोएं, अपने घर के अगल बगल जितने भी पानी जमाव है उसको समाप्त करें। मलेरिया रोधी जो छिड़काव IRS होता है अपने घर के अंदर में जरूर कराएं। किसी को बुखार, सरदर्द या किसी तरह का मलेरिया का लक्षण अगर नजर आए या महसूस हो, आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच और उपचार सुनिश्चित करें। आपके सहयोग से ही पश्चिमी सिंहभूम जिला को मलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। मुझे पुनः आपसे अनुरोध और आग्रह होगा, किसी को भी अगर बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो, सिर दर्द हो, तो निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी

0: हजार उपचार सुनिश्चित कराएंगे, तभी हम लोग जिले को मलेरिया मुक्त बना पाएंगे। धन्यवाद।
1: जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया के मामले में रेड जोन माना जाता है, इसलिए इस मौसम में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे जिले में आज कल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला खत जो हमें भेजा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, माहौलडीहा सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधा मनी महतो, रविवारी, बंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अन्नु, तन्नु, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो, बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देवेंद्र जी, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अन्नू, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म तेरे नाम का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल समीर के।

और अब सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म द जेंटलमैन का ये फरमाइशी गीत। पसंद आप सबों की है। गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती वासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद। छोटा निमड़ी चायबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार। अमला टोला चायबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी, नताशा। बड़ी बाजार चायबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म द जेंटलमैन का ये गीत, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की। पसंद आप सबों की थी। बरा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, सरायकेला, पारापुर, देशावली ग्राम, पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पारापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, लाडला टुक टुक गवहानकर, कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुदरी सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनि, बिंजना लोवादा परिवार, ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साईमान और पूरा महतो परिवार। आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि हम बले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव वरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
8: तुम लोग बुरा मुस्लिम काम सोए अनिता थामसा भरूपा असना करना ऐसे दुकुर मिना जापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
9: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दुनिया में बुरी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से यार की कलो पुलिस कलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ले तना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ले तना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5,00,000 तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4,00,000 तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
11: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
12: शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। आप सबों की पसंद पर सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विकी गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और भाई एस देहुरी, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा सनम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी, नबीहा, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, राउफ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये शीर्षक गीत, आवाज़ सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, बोल समीर के।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म राम लखन का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद अजीज़, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं ग्राम पोंडा काटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव सोरेन और एनएस महली, कुचाई बिदरी से केपी सोए, दुर्गावती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी सोए, ग्राम सुराबेरा से बासी सरदार, कमल सिंह सरदार, बीरू सरदार और अंशु सरदार, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी, रिया और अर्पिता कुमारी, पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, दंतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

स्वागत है फरमाइशी गीतों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं। ये पहला गीत बप्पी लहरी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है थानेदार, बोल अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत के फरमाइश करता हैं ग्राम परजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या चंसौलिया, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा।

और अब सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म तेजाब का ये फरमाइशी गीत, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के फरमाइश करता हैं दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सीआर कुलकर्णी, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, साइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी, अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कांसलेकर, दिनकर विमल, विशाखा कांसलेकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिवनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवेई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म है फूल बने अंगारे।

और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत, आवाज़ अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश आप सबों की है, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिए, भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वशीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैख, चीना सैख, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल सैख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: آج رات راؤنڈ آف 16 میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. پردھان منتری نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی 6 دن کی یاترا کے پہلے چرن میں آج شام انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا پہنچے. راشٹرپتی پربھو سوبیانتو نے ہوائی اڈے پر شری مودی کا سواگت کیا. شری مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا نے 2018 میں اپنے سمبندھوں کا استر بڑھا کر ویاپک رنتک ساجھیداری تک پہنچایا جس سے لوگوں کو لابھ ہوا ہے. ایک رپورٹ.
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है. श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे भारत और एशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी. आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे. जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती.
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा. राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है. मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है. उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा. गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता. यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते. न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए.
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है. ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है. इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं.
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई. उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम

0: लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिसे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई

0: कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्सपर्ट शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरे को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrandipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

0: पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीजों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल,

0: गुलशन भाई जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन, ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं। किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में अब नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
1: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
1: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं
0: जी।
1: तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: जी सबसे पहले तो विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
1: नमस्कार नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो डिजिटल साक्षर का कैसे प्राप्त करो, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
0: जी।
1: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं, हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। लीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफी मटेरियल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
0: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
0: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
0: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मेरा एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश कर तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
0: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी। और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
5: सभी को नमस्कार
0: जी।
5: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा यानी 112 पर, तो ये नॉर्मल है ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
0: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर सवाल करेंगे आप?
0: गुड गया, शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
0: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
3: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना

0: बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
1: जी? नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। कुमारन महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
1: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापारा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
2: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
0: जी,
2: स्टूडेंट्स
1: जी, जी सर।
2: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या एनपीटेल नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें आईआईटी कानपुर या आईआईटी के बड़े एमटेक मास्टर्स पीएचडी के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के आईएम्स के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
0: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
2: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खुलना सबसे बड़ा काम और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
0: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
4: धन्यवाद। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
0: जी, बताइए।
4: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड इसमें भी अगर मैसेज आते हो और उस वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होते देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें भी चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर

0: बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें आज की डेट में की फीचर्स फोन ही बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियां कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इंफॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती है कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे चलता रहेगा? तो 1930 जो काल है इस पर कभी ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है उनका कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: यह बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं है तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर तीन पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
2: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब समय है गजलों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं चंद गजलें चित्रा सिंह के स्वर में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई भाषा केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल में चित्रा सिंह को, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में सुनवाते हैं ये पहला सुर मोहम्मद रफी का। फिल्म है हीर रांझा।

आज वो दौर आ गया है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ से भी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन ये आशा जी की आवाज़ है जिससे लगातार सुनते रहने पर भी हम सब लोगों का लगाव बढ़ता ही जाता है। हमारी आशा जी, जिनकी गायकी में हजारों रूप लेकिन व्यक्तित्व का रूप एक, जैसा अंदर वैसा बाहर, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, दिल जितना बड़ा उतना ही साफ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत आवाज़ आशा भोसले की। और अब सुनवाते हैं फिल्म शान का ये गीत आवाज़ आशा भोसले की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शान का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं फिल्म शराबी का ये गीत, बोल अनजान के संगीत, बप्पी लहरी का, आवाज़ आशा भोसले की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आज और कल का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, बोल साहिर के और संगीत रवि का। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल मजरूह के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: हो।
1: श्रोताओं, मोहम्मद रफी के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Syama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।